0: और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं। आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
1: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिक कथा के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिक कथा सीखा।
0: ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने अध्यात्म के बारे में जाना, तो हमें भी बताइए कि अध्यात्म क्या मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज, हम क्या समझे अध्यात्म से, कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे?
1: आध्यात्मिक मतलब के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल, आध्यात्मिक कथा है स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक कथा का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना।
0: ओके, ऑलराइट, सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना, और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है, बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है, और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं, हाउ डू दे टेक इट, स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
1: ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
0: ऑलराइट,
1: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है। तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना अपना जो आय है, अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं, ये एक तरह की यूथ में देखता है।
0: ओके,
1: और दूसरे यूथ कुछ है जो आध्यात्मिक कथा में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो लोग वी कॉल देम मटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं, तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं तो उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भलाई आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है। ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है, वो लोग युक्ति यानी लॉजिक

0: या रीजनिंग पे बिलीव करता है,
1: ओके
0: वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है वो लोग उसके बेसिस पे उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं।
1: ओके ओके ओके
0: एक जगह पे जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को पूछता तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
1: ओके ओके बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब, जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है और जितना आध्यात्मिक लोगों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है, उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म समझो कि, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल लिरिक्स, रियल पोएम्स ऑन हिज ऑन आवर डिवोशन, ऑन हिज डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें, इफ वी विजुअलाइज इन आवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें, तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में, हम लोग अपने आत्मा को खो देते, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है, ये होता है आध्यात्मिकता। अगर हम निराकार में विश्वास करें तो,
0: जी जी जी,
1: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी, उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। अब दास, अब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है, मैं कोई सी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है। तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे हैं जो सारे धर्मों में कॉमन है। सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है। उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी,
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है।
0: ओके,
1: वो पहले साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने, और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीज मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं।
0: ओके।
1: दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहनी चाहिए। जब उनका जन्म हुआ माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है।
0: करेक्ट।
1: फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके प्रति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यानी मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है।
0: वाओ, ओके।
1: यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो। यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट whosoever इज अराउंड यू। आपके साथ जो है उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही आत्मा आध्यात्मिकता।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने। एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझ कर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझ कर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है।
0: ओके।
1: और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संघ बोलते हैं
0: जी,
1: साधु संघ। साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है। साधु व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनके संगत से ये प्राप्त होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संघ, ये अगर मिले, एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
0: ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर से बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस है, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार अपने बंधु इन सबको साथ रहते हैं लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में कोविड 19 के टाइम में रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग अपने उद्योग में अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करे। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावट ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाले, निकाल के उनके साथ कनेक्ट करें, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए, समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए, जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए, ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं, स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं, काफी बच्चों के पास गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है,
0: राइट,
1: आजकल के पढ़ाई AI ML से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है, और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता उसको पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने विदाउट हिज नॉलेज ही इज स्पिरिचुअल।
0: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब, आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग?
1: सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कंप्लीमेंटरी है, लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी के पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिक कथा के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं।
0: ओके,
1: इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिक कथा, धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी स्पष्ट सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिक कथा के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कोई सिंसियरिटी सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है, वो अपने अनुभव से पता चलता है।
0: Okay.
1: हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं।
0: Yes.
1: इंट्यूशन आगे जाके अगर बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग, गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है, तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आई साधारण आंखों में नजर नहीं आता है।
0: बहुत सुंदर, सही बात।
1: तो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिक कथा में यही है।
0: ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए ना एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

दास साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिक

0: वह अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे। तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजन को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप जाकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
1: करेक्ट।
0: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
1: ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है। आज के प्रोस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की, और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे। तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल
1: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब, बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मोस्ट वेलकम सर।
3: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो का एक बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग। आज हमारे साथ हैं मेघा चंद्रन जी, जो फाउंडर हैं हैश अडॉप्ट डोंट शॉप की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित किया है। कभी जो डॉग्स को पसंद नहीं करती थी, मेघा जी आज सैकड़ों अनंत पपीज की माँ हैं और 500 से ज्यादा पप्स को प्यार भरा घर दिलाने में अपना योगदान दे चुकी हैं। उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है क्रिश, जिससे एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बदल दिया। तो आइए स्वागत करते हैं मेघा जी का और सुनते हैं प्यार, करुणा और इंसानियत से भरी उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी।
2: तो मेघा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
3: गुड इवनिंग। पेट्स या डॉग्स बोलो, मेरे दिल के बहुत करीब है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी।
2: वी आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड मैम। आपकी जर्नी आज से एक डेकेड पहले शुरू हुई और आपने इतनी सारी चीजें अचीव करी हैं। ओवर 500 पेट्स को, पप्स को आपने फॉस्टर होम्स प्रोवाइड करवाए हैं एंड आपकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है हैश अडॉप्ट डोंट शॉप, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में जाना। तो आप मुझे सबसे पहले आपकी जो पेट लाने की, घर में आपके पेट आने की जो जर्नी थी, आपका वो डिसीजन क्या था, किस तरह से आपने वो डिसाइड किया, आपका पहला पेट कौन था, कैसा था, कैसे उसका नाम रखा गया, उसकी अगर कोई बैक स्टोरी हो तो हमारे साथ साझा करें।
3: एक डिकेड 10 साल पहले आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलती मुझे डॉग्स से एलर्जी है, या फिर मुझे डॉग्स इतने अच्छे नहीं लगते, या उनसे डर लगता है। सो क्योंकि तब तक मैं बोलूंगी आई वाज रियली इग्नोरेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ दैट आई कुड हैव हैड। बट एक क्रिसमस इवनिंग 2016 के क्रिसमस इवनिंग पे एक पपी जो हमारे कार के नीचे पास हुआ, बस उसको मेरे हस्बैंड ने जब उठाया एंड उसको घर लेके आए, बाद में हमने बहुत ट्राई किया अगर किसी को चाहिए उसी दिन रात को, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक करता है, हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, रेस्क्यू के बारे में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पेट रेस्क्यू करता है या पपीज को रेस्क्यू करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कुछ नहीं पता था। उसको घर लेके आए एंड 25 दिसंबर से 31st जो 6 दिन वो हमारे घर पे रहा, तभी थोड़ा फासला कम हुआ मेरे और डॉग के बीच में। मेरे हस्बैंड उसको ध्यान रख रहे थे, बहुत छोटा पपी था, 20-25 दिन का। एंड जैसे वो हमें क्रिसमस इवनिंग को मिला था और उसके फोरहेड पे एक अच्छा सा तिलक जैसा बना हुआ था व्हाइट कलर का, सो माय हस्बैंड्स थियरी वाज कृष्णा कम क्राइस्ट, सो उसका नाम क्रिस रखा हमने।
2: वाओ।
3: एंड वो क्रिस जाते जाते जब देखा, एंड आई वाज इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी, मदरहुड की इंस्टिंक्ट, पता ही नहीं चला कब वो मेरा पहला बच्चा हो गया। एंड ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। जब क्रिश आया उसके बारे में पता चला, ऐसे कितने सारे पप्पी होते होंगे जिनको घर नहीं मिलता है, जो अपने माँ से बिछड़ गए होंगे, अकेले सरवाइव नहीं कर पाते, इतने छोटे कि वो बिजी स्ट्रीट पे, रोड पे सरवाइव नहीं कर पाते, उनका क्या होता होगा। क्रिश को हम मिले, हमको क्रिश मिला, हमने एक दूसरे को रेस्क्यू किया, अच्छा हुआ। लेकिन इसके ये एक आई ओपनिंग जर्नी था टू बिगिन दिस पार्ट। उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक। जब ही जो पपी मिला माँ से बिछड़ा हुआ जो एक तो एक डेढ़ महीने से छोटा है, सरवाइव नहीं कर सकता है, अकेले है, बिजी स्ट्रीट में है, एट अ टाइम उसको मैं पिक करने लगी, उसको फॉस्टर करने लगी और एडॉप्शन डालने लगी। जैसे एडॉप्शन डालने लगी तभी एक चीज आता था कि इसको मैं अच्छे से हम लाते पालते वैक्सीनेट करते सेफ्टी प्रोवाइड करते और देते तब ऐसा लगता है कि दिल का टुकड़ा दे रहे हो। तो ये जिनको देते हैं हम जो घर पे वो जाता है वो फैमिली का पार्ट बना के रखेंगे, पूरी लाइफ देखेंगे, तभी वो उसके लिए सारे एडॉप्शन गाइडलाइंस जो AWBI के वेबसाइट पे है उसको फॉलो किया, पढ़ा, उसको समझ के उसको फॉलो करके देने लगे। आज अगर मुड़ के देखूं तो ये 500 पेट्स जो भी घर में गए, मुझे वो फैमिली सारे पता है, उन पेट्स उन्होंने पेट्स को कैसे रखा है, वो कैसा हिस्सा है, वो फैमिली हमारे लाइफ के कैसे हिस्से बन गए। इट इज ब्यूटिफुल जर्नी टू बी फ्रैंक। एंड एक ही था कि जो स्ट्रीट पे इतने ठोकर खा के बिना खाना पीना कभी इतने मौसम के उतार चढ़ाव में ऐसे सरवाइव करते, वही इंडी डॉग को थोड़ा प्यार और सेफ शेल्टर एंड फूड अगर मिलता है, हेल्दी फूड एंड वाटर, देन दे कैन डू ब्यूटिफुल एज अ पेट। सो व्हाई नॉट टू बिगिन दिस, वही एक मोटो था। एंड क्रिस के आने से पहले लाइफ इतना ही था कि ऑफिस गए, फैमिली, हमारा त्योहार, हमारा काम, यू नो नॉर्मल लाइफ व्हाट यू कॉल ऑफ एन ह्यूमन। इनफैक्ट आई वुड से आई वाज अ प्रीटी सेल्फ इन अ सेल्फिश ककून लाइफ ऑफ मायसेल्फ, ये बोल सकती हूँ मैं। उसके आने के बाद पता चला लाइफ में पर्पस क्या है, ही डिफाइंड अ पर्पस फॉर इट। एंड ये भी उसने मुझे सिखाया कि सिर्फ लेना लेना या मांगना या उम्मीद रखना नहीं होता है, देना भी आना चाहिए। ये सोसाइटी को, ये इसमें हम क्या देते हैं, हम किसको देते हैं, हम किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी नेसेसरी है। एंड मैंने टू डू अ लिटिल बिट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, मैंने ये रास्ता चुना। नाउ दे आर पार्ट ऑफ माय लाइफ, ऑल दिस पप्स एंड रेस्क्यूड डॉग्स।
2: ब्यूटिफुल मैम, कितनी यूनिक जर्नी थी। कहां आपको पेट्स पसंद नहीं थे, डॉग्स पसंद नहीं थे, एंड देन वन रेस्क्यूड पप चेंज्ड योर एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ। और जैसे आपने बहुत एक ब्यूटिफुल लाइन कही, आपने उसे रेस्क्यू किया और उसने भी आपको रेस्क्यू किया। तो क्रिश, एक तरह से आई थिंक इट वॉज एक्चुअली जस्ट गॉड सेंट, जो आपकी लाइफ में आना ही था, वो डेस्टिन था, ताकि आपको अपनी लाइफ का ये पर्पस मिल सके, विच इज परहैप्स द बिगेस्ट एंड द ट्रूएस्ट पर्पस एनीबडी कैन डू एंड गिव इन दिस लाइफ, टू सर्व दीज एनिमल्स जो बोल नहीं सकते, जो खुद के लिए कर नहीं सकते। और इतने सारे देन यू नो पप्स को घर दिलवाना और इतना बारीकी से इस काम को करना, इतने एहसास के साथ, इतनी सटीकता के साथ। तो जो रूल्स आपने हमें मेंशन किए वो क्या कहते हैं, अगर अडॉप्शन के कुछ रूल्स हों वो अगर आप साझा करना चाहें तो वो क्या कहते हैं, किस तरह से ये, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू हुई, हैश अडॉप्ट डोंट शॉप, ये किस तरह से इसका बीज डला, इसका नाम आया, अगर आप कुछ बताना चाहें।
3: डेफिनेटली कोई भी प्रोसेस जब हम ज्यादा इसमें करना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ प्रोसेस। और ये इसीलिए क्योंकि रेस्क्यू करना एक है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनकी पूरी जिंदगी हमारे हाथों में होती है। वो कहाँ सेफली रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके घर में पलते हैं, और कैसी फैमिलीज है जो उनको अच्छे से रखेगी, कहीं अबेंडन नहीं करेगी, आधे से पालने के बाद छोड़ नहीं देंगे रोड पे या फिर किसी और को नहीं दे देंगे। ये सब नेसेसरी था कि उनकी पूरी लाइफ की सेफ्टी हम कवर करें। तब लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, रूल्स सेट हो, और हमारे इंडियन AWBI का इतना ब्यूटीफुली सेट आउट ऑल रूल्स है, वो सब पढ़ के हम उसको फॉलो करके उसके हिसाब से चले। तो
2: अगर इसका फुल फॉर्म हम जान सके मैम थोड़ा सा,
3: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज
2: AWBI।
3: एंड करेक्ट, ऑनलाइन यू कैन चेक ओवर देयर, वी हैव अ गुड गाइडलाइन सेट एंड टाइमली रिव्यूड। उसको सब नॉर्मल पब्लिक को भी ये पढ़ना चाहिए। मैं अगर आप मुझे पूछो तो बच्चों को ये वाला इवन स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको पता चले एनिमल्स के क्या राइट है, उनके लिए हम कैसे वॉइस रेज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम।
2: एब्सोल्युटली, इट इज नेसेसरी। एब्सोल्युटली,
3: एंड बस यही प्रोसेस सेट करने के बाद कोविड का टाइम आया. हाँ, कोविड में बहुत सारों को पेट चाहिए था, लेकिन कौन कैसे रखेगा, वो सीरियस है नहीं है. कोविड हटने के बाद, कोविड का डर उठने के बाद, सेफ्टी जोन में आने के बाद, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे ये पेट पेरेंटिंग की जर्नी, ये सब देखना बहुत जरूरी था. इसीलिए हमने तभी वो सेट किया ये ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई ऑल्सो बिलीव इनको एक जगह पे, ऐसे एक रूम में एक जगह पे जमा करके उनको ऐसे रख दो, और उनका क्या बोलते हैं, ऐसे सिर्फ खाना पीना दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं चलता है. ये छोटे पपीज थे, उनका ऐसे ही देखभाल होता है, उनकी टेम्परेचर मापी जाती है, उनको भी फीडिंग बॉटल फीड की जरूरत होती है, उनका सोना, उनका इनपुट आउटपुट, एवरीथिंग वॉज हेल्थ वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल टू मेक देम सर्वाइव फर्स्ट 1 or 2 months. इसीलिए इंडिविजुअल फैमिलीज को ढूंढना पड़ा हमें, जो पैसों के लिए या इसके लिए नहीं, बट दिल से हेल्प करना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे. तो बहुत सारे वॉलंटियर फैमिलीज आए आगे, ऐसे ही 4-5 वॉलंटियर फैमिलीज, वो लेडीज, वो कपल्स आगे आए टू फॉस्टर देम. वो 1-2 महीने रखते हैं इनको, अच्छे से पालते हैं, खाना पीना इनको तंदुरुस्त बनाते हैं, पहला वैक्सीन हम देते हैं, देखते हैं फॉस्टर फैमिली से उनके बारे में पूछते हैं, पपी कैसा है, हाइपर है, खेलता है, दांत आया है, सोता है, उसको और कोई मेडिकल या ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या है, सब पहले से उसको ह्यूमन हैबिटेट में प्रैक्टिस करवा के बाद में हम परमानेंट फैमिली या अडॉप्टिंग फैमिली ढूंढते हैं, सो दैट अडॉप्ट करने वाले का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको कोई बीमार शॉक नहीं, एग्जैक्टली शॉक ना हो, उनको भी कोई दिल दुखने वाली घटनाएं ना हो, जैसे वो गया सडनली उनको पता नहीं है उसके हेल्थ के बारे में. ये सो हम वैक्सीन देने के बाद जब हमें गारंटी होती है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, दे विल सर्वाइव एंड थ्राइव हेल्दी इन द परमानेंट फैमिली, देन वी स्टार्टेड. सो डिफाइनिंग दिस प्रोसेस वॉज एन एक्सपीरियंस जो हमने सीखा.
2: और ये बहुत सही बात आपने कही कि इसके रूल्स को, इसके गाइडलाइंस को, इसके एसओपीज को एक्चुअली स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमें सच में एट दिस एज ऑल्सो मुझे नहीं पता कि एनिमल वेलफेयर के क्या राइट्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, किनको आप इन्वोक कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को परेशान करता है, उन पे क्रूल्टी करता है, उनको स्टोन थ्रोइंग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, बट हम बिल्कुल अनअवेयर है एज सिटीजन्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमें हमारे साथ साझा की कि हम जाएं और पढ़ें ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको एक बार स्क्रोल थ्रू करें और समझें कि एनिमल्स के क्या राइट्स हैं, ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें और एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें स्ट्रेस के लिए. आगे चलते हैं मैम थोड़ी सी मस्ती भरी बातों के बीच. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिश के साथ, क्रिश के आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, और उसके साथ कौन से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स थे जो आज भी आपकी आंखों में खुशी और आंसू साथ ले आते हैं?
3: क्रिश की लाइफ स्पैन तो कम थी, ही स्टेड विद अस ओनली 6.5 years.
2: ओके,
3: बट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. मुझे अच्छी तरीके से याद है जब my daughter was born, Krish was around 8 months. और उसके लिए वो ऐसा था कि कोई नया खिलौना है या क्या है, ये हाथ पर हिलाती है, क्या करती है बच्ची, क्या कर रही है. एंड लेकिन बस उनका एक डिफरेंट बॉन्ड होता है बच्चों का और डॉग्स का. जब मेरी डॉटर को मैं ऐसे सुला के बेड पे, व्हेन शी वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड, 3 to 4 months, क्रिश उसके बाजू में ही बैठा रहता है. वो थोड़ा सा बेड के कॉर्नर में आती तो वो बाक करता, मुझ पे चिल्लाता कि ध्यान दो जल्दी से. उसका थोड़ा सा ऐसे हिलती, वो थोड़े रोने जैसे होती तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता क्या हो रहा है. हम बोलते हैं कि बच्चों को नुकसान हो सकता है, काट लेंगे ये वो, ये बिल्कुल गलत है. बच्चों को अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना सिखाओ, और उनको खाना पीना वैक्सीन दो, उनको भी एक सेफ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करो. बच्चे और डॉग्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या बच्चे और कोई भी एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो देखने की खुशी कुछ और होती है. वो आई कैन, माय वर्ड्स विल फेल, आई कैन नॉट पुट प्रॉपरली इन द वर्ड्स आई कैन से, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू लुक एट देम. तो टू बी ब्रॉट अप टुगेदर।
2: जी जी, अभी हम एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनेंगे इन प्यारी बातों के बीच, और उसके बाद मैं इसी पे आना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि जब आपके घर में क्रिश आया तब उस टाइम आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो प्रैक्टिकली योर बेबी एंड क्रिश ग्रू टुगेदर। तो मैं ये बहुत कीनली जानना चाहूंगी कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न के आसपास एक पेट का रहना कैसा होता है, कैसे वो बड़े होते हैं। बट पहले हम एक गीत सुनेंगे आपकी फरमाइश पे। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: मेरा फेवरेट गीत होगा वो चार्ली का, चार्ली 777।
2: गीत का नाम
3: यू कैन प्ले एनी सॉन्ग ऑफ चार्ली, वो इमोशनल ट्रैक जो है चार्ली का।
2: ओके, तो चलिए सुनते हैं चार्ली 777 का ये ब्यूटीफुल सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मेघा मैम। आगे चलते हैं। जैसे मैंने सॉन्ग के ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी एंड देन एक चाइल्ड के अराउंड एक पेट का होना किस तरह से उसको डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं बच्चों के अराउंड पेट्स को, जब यू नो फॉर एग्जाम्पल अ मदर इज एक्सपेक्टिंग, तो बहुत घर में डिस्कशन होता है कि अगर ऑलरेडी एक पेट है तो यू नो शुड वी डू अवे विद द पेट, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या वो उसकी ग्रोइंग अप के लिए अच्छा होगा। मैं बहुत पर्सनली एक फ्रेंड को जानती हूँ जिन्होंने ये पूरा यू नो ये डायलेमा सफर किया और अल्टीमेटली उनको अपने पेट से दूर होना पड़ा, उनको अपने पेट को किसी को अडॉप्शन में देना पड़ा जब वो खुद प्रेग्नेंट थे। तो बहुत सैड था वो मोमेंट उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए जिनके साथ वो पेट बड़ा हुआ। तो इस पे अगर आप थोड़ा लाइट थ्रो करें मैम।
1: डेफिनेटली, मैं एक चीज में बहुत लकी थी। माय गायनेकोलॉजिस्ट वॉज वेरी वेरी

0: nature oriented, extremely experienced person, a long 30, 40 years plus wow. experience she had in her field. उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, जो नेचर करेगा वो कोई दवाई नहीं कर सकती है. सो वॉट एवर वी डू मेडिकली इन मॉडर्न मेडिसिन और दिस, अगर आपको याद हो, इफ यू गो बियॉन्ड 50-80 ईयर्स के पहले, लेडीज गाय भैंस बकरिया बिल्ली कुत्ते इन सब के बीच में तंदुरुस्ती से घर का काम करते हुए उनकी डिलीवरीज काफी हेल्दी एंड पौष्टिक होती थी. हमारे पास अभी मॉडर्न मेडिसिन का एक स्ट्रेंथ है, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक है, मोर नॉलेज शेयर करने वाला सोशल मीडिया है, सर्कल्स है, सपोर्टिव सर्कल्स है, सब है. उसमें एक चीज ये नेचर का भी एक ऐड कर लो और भी ब्यूटीफुल हो जाता है मदरहुड जर्नी. एक चीज इम्पोर्टेंट है, जब आसपास हो वो सिर्फ डॉग्स का नहीं, कोई भी हो, इवन हमारे घर में किसी को खांसी होती है, फैमिली मेंबर्स को खांसी होती है तो बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है थोड़ा दूर रहो क्योंकि नाजुक होता है ये समय. सो हम क्या उनको बाहर भेज देंगे? नहीं. अगर हमारे घर में कोई ऐसा हो जिनको टर्मिनल इलनेस हो, तभी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या उनको कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रोन टू एलर्जीज हो, हम क्या उनको दूर कर देंगे? नहीं. पेट्स फैमिली का हिस्सा है, उनको ये खुशी में शामिल करना हमारा ड्यूटी है. और यहीं से फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉरालिटी वो न्यूबॉर्न के लिए स्टार्ट होता है. एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बच्चों को बच्चों के साथ रख के ही पाला जा सकता है. उसको बच्चा समझना पड़ता है घर का और वैसे ही, और उसको भी हेल्दी बनाना पड़ता है, उसको वैक्सीनेट करके रखो, उसको साफ करो. हाँ, बाल दिखते हैं बच्चों के आसपास या प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास बाल है, हेयर फॉल है, ये सब सुनते हैं, उनका ग्रूम कौन करेगा? आज हमारे बच्चों का ग्रूमिंग कौन करता है? हम ही करते हैं ना. उनके बाल तो मैं ही बनाती हूँ, मेरी लड़की के बाल मैं ही बनाती हूँ. उसके बाल ठीक हो, वो नहाती है, वो मेरा ड्यूटी है. तो मेरे पेट्स नहाते हैं, वो साफ है, उनके वो भी हेल्दी है, वो भी हाइजीनिक है, उसकी ड्यूटी भी मेरी हुई. हम उनको तो कंप्लेन नहीं कर सकते. सो यस, दिस इज अ बिगिनिंग, इट्स अ लेसन, इट्स अ जर्नी,
1: इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज. आई थिंक इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज. यस यस, ब्यूटिफुल. तो ऐसा कभी हुआ कि आपके आपका चाइल्ड जब बड़ा हुआ, आपकी डॉटर जब बड़ी हुई, तो उसने कुछ लेसन्स लर्न किए, क्योंकि नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है जब घर में पेट होता है, तो ऐसे कोई मोमेंट्स जहां पे आपको लगा कि आपके बच्चों में बहुत सारी और वैल्यूज एड हुई हैं उस पेट के घर में आने से, तो अगर वो शेयर करना चाहें?
0: हाँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. क्रिश के आने के बाद एक बार ऐसा हुआ, 15-20 दिन समझ लो, क्रिसमस के बाद 20 डेज अप्रोक्सीमेटली 15th जैन को एक कॉल आया मुझे कि किसी ने पटाखे जला के एक सीनियर डॉग 4-5 इयर्स ओल्ड डॉग को उसको हार्म किया है. उसको 3 degrees पूरे बर्न्स हो गए, चमड़ी निकल गई है ये. एंड तभी कुछ तो लगा, बड़े कुत्तों को छूने की अभी भी मुझे आदत नहीं थी. ऐसे 20 दिन आ गया था, वो मेरे साथ बैठता था, गोदी में बैठता था, एक बॉन्डिंग बिगिन हो गई थी. लेकिन बड़े कुत्तों को कैसे रेस्क्यू करते, उतनी हिम्मत होगी मेरे में, वो नहीं पता था. बस और फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी था, मैं ऐसे ही ऑटो लेके चली गई, वहां पे उठा के उसको ऑटो में डाला एंड उसको वेटरनरी के पास ले गई. एंड जब मैं उसको उठा रही थी, थोड़े लोगों ने हेल्प किया और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया, मैडम ध्यान से, ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये तो ट्रक्स के पीछे सब भागता है, ये 2-4 लोगों को भी उसने काटा है, यहाँ यहीं पे रहता है, तो आप ध्यान से करो. मंदिर के बैक गेट में वो सोया हुआ था, बनशंकर के मंदिर के, और मैं उठा के उसको ले गई. आप मानो या ना मानो, उसका फेस उसने मेरे तरफ ही रखा था. एक भी बार उसने दांत दिखाया, दांत बताया, कुछ नहीं. उसको पता था कि उसको हेल्प चाहिए और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ. काफी समझदार होते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. उस दिन ले गई, उसको रेस्क्यू किया, 20-25 दिन हुए उसको ठीक होते, खाना खाते स्टार्ट करते, ड्रिप्स से बाहर निकलते, उसको स्लो रिकवरी थी बट ही रिकवर्ड. एंड पूरी प्रेगनेंसी आफ्टरनून जब मैं खाना खाती थी, अपना ऑफिस का काम खत्म करके एक घंटे का ब्रेक लेके मैं अपना खाना खाती थी तो मैं ऑटो पकड़ के जाती क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे, उसके लिए टिफिन कैरियर ले जाती, उसके साथ बैठती, उसको खिलाती और आती। और ये मैंने तब तक किया जब तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा गोइंग फॉर अ डिलीवरी। डिलीवरी टाइम पे भी मैं बता के गई थी अपने हस्बैंड को कि 3-4 दिन मैंने आई एम इन हॉस्पिटल, आप फीड करो उसको, वो ये देखेगा। एंड एक ब्यूटीफुल मेमोरी है, वो बोलते हैं ना 25 दिन या 41 डेज के बाद ही प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे को निकलना चाहिए। सो जब मंदिर जाने का परमिशन मिला बच्चे को, उसको मैं 41st डे पे After my daughter was 41 days old, when I took her to temple, उस दिन रात को मैंने उसको बोला आज पहली बार एक स्पेशल लाइफ फ्रेंड से मिलवाऊंगी करके, एंड आई टुक हर ऑन दैट डे नाइट टू मीट द डॉग, दैट डॉग इज हैड रेस्क्यूड, एंड एवरी डे नाइट माई हस्बैंड यूज टू फीड एंड आफ्टरनून आई यूज टू फीड। तब तक वो काफी हेल्दी हो चुका था, 6-7 मंथ्स हमने उसका केयर किया था, एंड वो इतना खुश हो गया मुझे और पपी को देख के, क्रिश को देख के, आना को देख के, वो ऐसे राउंड राउंड घूम के खुशी अपनी जाहिर कर रहा था। मैंने उसको बच्चा बताया, ही लिक्ड हर लेग, एंड व्हेन माय डॉटर बिगेन टू वॉक, अंडरस्टैंड एंड टॉक, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम रोज रात को बनशंकरी में खाना खिलाने जाते हैं रोड पे, वो मेन स्ट्रीट जो है टेम्पल वाला रोड वहां पे। सो वो जब बोलना उसने शुरू किया, उसने पहले ही यही चिल्लाना स्टार्ट किया। वो भी हमारे साथ रोज रात को आती थी, हम उसको बेबी सीट में बिठाते, वो देखती कि सारे डॉग्स आते हैं खाना खाते, वो लोग उसको देखते खेलते, कभी कभी कार का डोर में ओपन रखती, वो आके मिलके जाते बच्चे से। एक दिन एक एपिसोड नहीं हुआ उसके साथ, एक काटना, एक दांत लगना, कुछ नहीं हुआ। वो सबको छूती थी, मैं उसका हाथ साफ करती थी पूरा फीडिंग होने के बाद, उसने अगर उनको टच किया उसको क्लीन करती थी, इनको भी बाहर पूरी क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते थे, बट उनको उनकी बॉन्डिंग बनाने दिया। एंड वो जाके रोड पे जोर से चिल्लाती, उसका नाम हमने राजा रखा था क्योंकि बनशंकरी का राजा जैसा था वो, व्हाट यू से अल्फा नेचर
1: अल्फा डॉग
0: अल्फा डॉग, एंड इसलिए वो राजा अन्ना करके बुलाती, वो जो से चिल्लाती, छोटी बच्ची थी, राजा अन्ना करके जो से, और राजा ऐसे आता कि मेरा मेरे लिए आए, उसको इतना अच्छा लगता, वो भाग के आता कार के पास। यस, तो ये एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है जो बच्चे और डॉग्स में हमें देखने के लिए मिलता है, और ये पूरा सब क्रेडिट जाता है क्रिश को, उसी ने मुझे सिखाया एंड उसी ने आरना को सिखाया, आरना इज माय डॉटर, सो यस उसी ने उसको भी सिखाया।
1: राइट राइट, बिग हेलो एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू आरना, जिनकी पास इतनी खूबसूरत, इतनी रेजिलियंट, इतनी ब्रेव, इतनी करेजस मदर है, जो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग है और इतनी क्लियर है अपने थॉट्स और अपने पर्पस के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस आरना, आई होप यू ऑल्सो ग्रो अप टू बी एज अमेजिंग एज योर मदर, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम एंटायर SN रेडियो फैमिली। एंड क्या राजा अभी भी है मैम, इज ही स्टिल देयर?
0: राजा अभी भी है,
1: अमेजिंग।
0: और 9 ईयर्स हम रोज राजा से मिलने जाते थे।
1: 3 साल
0: पहले ऐसा हुआ कि उसके उसको हर्ट हुआ था, पूरी रात हम घूमे 4 बजे तक सुबह ढूंढते रहे, वो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ वो नहीं मिला, थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन सुबह पता चला किसी ने उसको नियर बाय वेटरनरी में एडमिट किया था क्योंकि उसको एक्सीडेंट होके उसको आंखों में लग गया था। आज वो लव फॉर फॉरगॉटन नाम के एक शेल्टर में रहता है, मंथली वी हैव पैसिवली अडॉप्टेड हिम, सो महीने में 2 से 3 बार हम वहां जाते हैं, कोई भी त्योहार हो, आरना का बर्थडे हो, मेरे दूसरे पेट्स का बर्थडे हो, हमारा वहां जाना होता है। कभी भी मेरा मन थोड़ा भारी लगता है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस होता है रेगुलर लाइफस्टाइल से पूरा, तो जाके बैठना है किसी फ्रेंड के साथ, तो मैं राजा के साथ जाके LFF में बैठती हूँ। मेरी बेटी को अगर आप संडे सैटरडे पूछोगे कि फ्री हो कहीं घूमने जाना क्या, तो वो पहले यही बोलेगी LFF जाना है, राजा से मिलना है, सारे फ्रेंड्स से मिलना है। उसको आदत है शेल्टर विजिट करना, वहां पे जाना, खेलना। तो राजा अभी भी है, एंड राजा आज भी वही खुशी से देखता है बच्चे को, वो दोनों बहुत खेलते हैं, वो राजा को इतना प्रेम से ऐसे घुमाती है और खेलती है, आज भी वो उसको राजा अन्ना बुलाती है, एंड स्टिल दैट बॉन्डिंग कंटिन्यूज एज इट इज, एंड इट्स नाइस टू सी 9 ईयर्स एंड टचवुड, आई वांट हिम टू बी हेल्दी।
1: या टचवुड, लॉट्स ऑफ लव टू राजा अन्ना एंड लॉट्स ऑफ गुड टाइम्स टू राजा अन्ना, मे हिज ब्रेव सोल, मे हिज ब्रेव स्पिरिट मेंटेन एंड ही लिव टू बी 10 more years. एंड बहुत ही खूबसूरत आपने एनेक्डोट हमारे साथ साझा किया, कैसे आपकी डॉटर और राजा अन्ना और क्रिस सभी साथ में बड़े हुए और बहुत ही ब्यूटिफुल मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए. मैम, अगर मैं पेट केयर के लिए, अब बहुत सारे लोग जैसे अडॉप्ट भी करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए होंगे इन 10 सालों में, तो कोई अगर ऐसी टिप्स हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जो हर पेट पेरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी होंगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी पेट केयर की बातें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, अगर वो आप शेयर करें.
0: वन थिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल इज कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स जैसे हम अपने पेरेंट्स को कभी लाइफ टाइम छोड़ नहीं सकते, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हमारे भाई बहनों को नहीं छोड़ सकते, हमारे अच्छे फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते, वही भावना अगर आपको आपके पेट के प्रति है, लाने के बाद आप वही कमिटमेंट मेंटेन करोगे. आप देश बदलते हो, शहर बदलते हो, जॉब बदलते हो, कुछ भी होता है, आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट सेफ प्लेस भी रखोगे. कल को हमें कुछ हो गया, बच्चों को कौन देखेगा, जैसे हम पेरेंट्स से उससे है, वैसे ही वो पेट को कौन देखेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा. ऑल ऑल्टरनेटिव, ये कमिटमेंट होना चाहिए. कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि एक बार पेट होने के बाद वो शेल्टर्स में या फिर स्ट्रीट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. स्ट्रीट पे पलने वाले बच्चे पहले से स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो पैक में बलते हैं, पैक उनको सिखाता है और उनको वो ट्रिक्स एंड ये सब आते हैं. जो पेट होते हैं वो ट्रिक्स नहीं सीखे होते उन्होंने. सडनली ऐसा मत समझो कि हाँ इंडियन डॉग है, हिंदी है, छोड़ दो, गली के कुत्तों के साथ रह लेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो कुत्ते इसको नहीं अपनाते, ये स्ट्रीट को नहीं अपना पाएगा, एक व्हीकल या एक ट्रैफिक से टकरा जाएगा सडनली, उसको पता भी नहीं चलेगा. तो एक ही चीज है, वो आपको पूरी लाइफ कमिट करके वो आपके साथ रह रहा है, वो कमिटमेंट को हमें भी रखना है. सो यस, कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल इन दिस केस.
1: एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली आंसर. बहुत विजन के साथ आपने इसका आंसर दिया, सरल सटीक और बिल्कुल विजनरी, कि ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. आज लिया, शौक पूरा किया और कल वापस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है. तो मैम, चलिए सुनते हैं एक और गीत आपकी फरमाइश पे, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी बातों के बीच. बताएं.
0: श्योर. ये पूरा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ माई मदरहुड. सो आई समटाइम वेन आई रिमेम्बर क्रिश, फ्यू सॉन्ग्स आई रिमेम्बर, दे पुल माई मदरहुड स्ट्रिंग्स, यू नो, वेरी स्ट्रांगली. एंड वन इज दैट गगनतू फ्रॉम KGF.
1: ओ वाओ, ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो चलिए सुनते हैं गगनतू फ्रॉम KGF.

0: आगे चलते हैं मैम। क्या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है जब घर में ऐसा लो सा माहौल था और उस समय आपके पेट्स ने, आपके जो अडॉप्टेड पेट्स हैं या जो आपके सेंटर में पेट्स आते हैं, उनके साथ उन्होंने कभी सेंस की हो वो एनर्जी कि आप लो हैं या घर का एनवायरमेंट ऐसा है, तो कुछ ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है कि आपके पेट ने कोशिश की हो आपको यू नो टू स्प्रिंग यू बैक इनटू लाइफ एंड टू चीयर यू अप, तो ऐसा कुछ?
1: डेफिनेटली क्रिश के जाने के बाद थोड़ा अजीब सा था एंड जब क्रिश 2 साल का हो रहा था और आराधना 1 साल की हो रही थी क्लोज टू, तभी एक हमारे लाइफ में एक चुलबुली सी एंट्री हुई थी टिकटॉक की।
0: टिकटॉक
1: यस, इंडी फीमेल गर्ल। ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मंडे था, शिवजी के हम दोनों शिवजी के पूजा में बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, एंड क्विकली हमने 5-10 मिनट्स में पूजा खत्म कर निकल नहीं पा रहे थे कि कॉल आया कि एक पप्पी रोड पे घुस गया, बड़े डॉग्स उसको घेर के खड़े, क्या करना है करके एक नेबर से कॉल आया, तो नीचे गए। तभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उसको उठा के रूम में रखा, हमारे बेडरूम में खाना पानी सब रखा और डोर क्लोज किया एंड हम निकल गए। एंड ऑफिस में शाम को आके देखा, हाँ रूम तो क्लीन करना पड़ा, बट बाद में पता चला फीमेल डॉग है, 2 मंथ्स ओल्ड, फुल कंप्लीट जेट ब्लैक एंड कोट एंड वेरी वेरी प्लेफुल, वेरी वेरी नॉटी। एंड ऑपोजिट एंट्री क्रिश, एक सोफिस्टिकेटेड पूरा ऐसा ह्यूमनाइज्ड बच्चा जैसा पला था, क्योंकि और ये ऑलरेडी शी वाज इन दबंग गर्ल,
0: राइट।
1: सो एक महीना रखा एंड मैंने उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया एडॉप्शन के लिए। 2-3 बहुत अच्छी फैमिलीज आई, हर बार जब फैमिली आती तब मेरे हस्बैंड बोलते नहीं ये नहीं, नेक्स्ट देखते, ये नहीं कब, थोड़े दिन बाद देखते, थोड़े दिन। फाइनली मुझे उनको पूछना पड़ा कि व्हाई ही इज अवॉइडिंग हर एडॉप्शन व्हेनेवर वी आर गेटिंग अ गुड फैमिलीज। तब उन्होंने बोला एक वी बोथ वांटेड ऑलवेज टू गिव होम टू अ डॉटर फीमेल, वी वांटेड टू अडॉप्ट, एंड उन्होंने बोला 2 पैर हुए तो क्या हुआ, 4 पैर हुए तो क्या हुआ, इतनी अच्छी बच्ची है हम क्यों नहीं रख सकते। प्रिपेयर तो हम नहीं थे, ऑलरेडी 2 साल का एक, 1 साल का एक, और इसमें ये 2 महीने की, तीनों का तो ओ माय गॉड,
0: हाउस ऑन फायर।
1: बट क्रिश वॉज एन प्रोटेक्टिव एल्डर ब्रदर, देन टिकटॉक वॉज दैट फ्रेंडली नोटोरियस सिस्टर
0: कंपनी, द यंगर सिब्लिंग, यस
1: यस। ये दोनों मस्ती करते थे, वो बाग करके ऐसे ऊपर से ऐसे बच के बैठ जाता था। सो हाँ, घर थोड़ा गंदा रहता था, यहाँ वहाँ खिलौने गिरे रहते थे, तीनों जब सोते थे तभी घर आराम
0: शांत होता था,
1: बट ये अलग है, ये वाली फीलिंग अलग होती है और वो देखना अच्छा लगा। सो टिकटॉक जब पार्ट हुई, हमेशा से वो ऐसे हैप्पी रहती थी, बट जब क्रिश बीमार हुआ वो 1-2 महीना हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था एंड में। उसको खोलने के बाद तो ऐसा लगा था मुझे कि मेरे लाइफ का बहुत मेजर पार्ट गया, बिकॉज उसी ने सब लिखा था, उसी ने सब सिखाया था। उसके बाद तो बहुत एमलेस थी मैं कि अब क्या कैसे, जब टिकटॉक ने हमें संभाला। आप मानो या ना मानो उनको समझ में आ जाता है कौन सी सुख की घड़ी है कौन सी दुख की। वो आके शांत से हमारे बाजू में, शी विल कीप हर फेस ऑन अवर लैप, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी। बहुत सन्नाटा होता था बिकॉज ऑफ द लॉस दैट वी हैड फेस्ड, वो आके बैठती, वो आके अपने खिलौने लेके आके हमें पुश करती कि खेलो मेरे साथ, एंड सडनली हमें ऐसे लगा जो जो क्रिश को अच्छा लगता था वो सब वो उसने अपनाया। क्रिश को ट्रैवल बहुत अच्छा लगता था, तब तक जब तक क्रिश था

0: टिकटॉक को ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता था, वो घर में रहना ज्यादा पसंद करती थी, अकेले भी चलेगा मुझे, नहीं मुझे घर पे छोड़ दो, मुझे ट्रैवल नहीं करना। लेकिन क्रिश के जाने के बाद अभी वो हमारे साथ सभी जगह पे ट्रैवल करती है, सभी जगह पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, आना के क्लासेस में, आना के फ्रेंड्स को मिलने के लिए, कहीं भी हो, फैमिली वेकेशन, शी इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, शी लव्स ट्रैवलिंग। वो पहले ऐसे खड़ी हो जाती है
1: कि मैं भी चलूंगी,
0: मैं भी। तो वो अपने आप को इतने अच्छे से ढाल लेते हैं, उनको जब पता आता है कि उनको एक रोल प्ले करना है हमारे लाइफ में, दे हैव टू रेस्क्यू, दे हैव टू सपोर्ट, दे डू इट सीमलेसली एंड ब्यूटीफुली।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी से आई एम श्योर आपने बहुत सारे लेसन भी सीखे होंगे, कुछ लाइफ लेसन सीखे होंगे इन पेट्स के अराउंड। तो अगर आप कोई दो लेसन मुझे बता सकें जो आपने अपने पेट से सीखे।
0: टू लेट गो एंड टू बी, टू नॉट कीप ग्रजेस। अब एक बार उनको डांटोगे, एक थप्पड़ ऐसे मारोगे कुछ गलती करने पे, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनको कितनी भी चोट लगी हो इसे, आप उनको थोड़ा आवाज दोगे या थोड़ा ऐसे पट करोगे, दे विल फॉरगेट इट, दे विल फॉरगेट दैट पेन एंड गेट बैक टू।
1: एब्सोल्युटली फॉरगेट, यस यस।
0: हम लोग इतना ये रखते हैं कभी कभी हेट्रेडनेस, वी फील सो मच विद, दे ब्रिंग द प्योर लव, they don't have any grudges, anything, they don't plan for their future, they leave to their presence like anything,
1: truly
0: complete present mein. And second thing, unme jo inclusion hai hame nahi ho sakta, aap bahut sare pet parents se mil sakte ho, bahut sare people who have animals in farms, you can ask them, they all will vouch. Dogs, cats, pigs, cows, goats, they all can survive together. Why today human is getting so intolerant with surviving with those domestic animals?
1: Absolutely.
0: So they teach you in very basic inclusion.
1: Inclusion.
0: They have become the part of a global Vasudeva Kutumbakam. When we will be embracing that?
1: Absolutely. Absolutely. So beautifully put. Actually, they are the epitomes of being inclusive and being welcoming and being, you know, not holding grudges against each other and just being in the moment. So beautiful to watch them grow and be. तो बहुत ही खूबसूरत बातें मैम आपसे हो रही हैं। इन्हीं बातों के बीच में एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगी आपसे।
0: When I meet Rajanna, I like and I play this song sometime. हाँ, उनको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको पता है म्यूजिक क्या होता है। वो सिर्फ he looks at me and we sit silently on a bench, we can say. I like this song, तेरे जैसा यार कहा।
1: Wow, lovely, beautiful. तो चलिए सुनते हैं तेरे जैसा यार कहा, राजाना के लिए, टिकटॉक के लिए, क्रिश के लिए और मैम के लिए।

0: बहुत ही खूबसूरत और एप्ट गीत है ये बिल्कुल। आखिर में मैम मैं आपसे दो सवाल और पूछूंगी। एक तो जाते जाते जो लोग सिर्फ एक एक अपने आप को सस्टेन करते हैं आसपास एनिमल्स के, आप उन्हें घर नहीं लाते, आपको शायद पसंद नहीं है, आप डरते हैं, बट क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसे आपने कहा को एग्जिस्ट करना और इंक्लूड करना, तो उन लोगों के लिए जिनको ना पेट्स पसंद हैं या वो डरते हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, बीइंग अ पर्सन हु हैज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर ओन और जो इतना आई एम श्योर काम करते हैं टू रेस्क्यू एनिमल्स एंड स्ट्रेज, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
1: It is absolutely fine to have phobia. It is okay to fear sometimes because I have been there. Lekin ek cheez hum sabne sikhi hai. I'm sure every household has taught across the globe. Koi bhi parents hai, sab palte hue hum sabne sikha hai. Be kind. So achha na lagna ek hai. Nuksan pahunchana, unka bura karna, वो गलत है। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ इट। नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, आप खाना नहीं दे सकते हो, ठीक है, आप उनको घर नहीं ला सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन। सबकी सबकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे अवेलेबल नहीं होते कि वो कर सके ये सब, ठीक है। उनको पानी नहीं रखते हो, खाना नहीं देते हो, अच्छा नहीं लगता है, घर पे नहीं लाते हो, ठीक है। लेकिन वो जब रोड पे सोते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दो, एक बार हॉर्न ना मारो, थोड़ा देखो, उनको पत्थरों से मारना, लकड़ियों से मारना, गर्म पानी फेंकना, उनको पैरों से लात मारना, अगर वो बारिश में कहीं खड़े हैं, शेल्टर ले रहे हैं, उनको वहां से भगाना, ये सब इनह्यूमैनिटी है। सो वी कैन बी एटलीस्ट एन ह्यूमन, इफ नॉट एन इंक्लूसिव, वी नॉट बी अ डॉग पर्सन, वी नॉट बी एन एनिमल पर्सन, विच इज ओके, बट एटलीस्ट वी कैन बी अ ह्यूमन, राइट? सो ये एक चीज है कि जिनको अच्छा लगता है उनको भी मैं यही बताऊंगी कि जरूरी नहीं है सारे पेट को लाना है। एक टाइम आप ऐसे हाईवे पे जाते हो, हम लोग करते हैं, हाईवे पे जाते हो, एक दो बिस्किट पैकेट रखे हैं, हाईवे डॉग्स को कुछ नहीं मिलता है, जंगल होते हैं, हाईवेज होते हैं, कोई खाना पीना कुछ नहीं होता है, कभी कभी दूर दूर तक कोई घर भी नहीं होता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, तो थोड़े बिस्किट है, वो पांच छह बिस्किट एक कॉर्नर पे रखते जाओ, विल सी मेनी मेनी व्हाट यू से स्केलेटन डॉग्स विल कम एंड ईट लाइक एनीथिंग एज इफ दे आर नॉट मेट। उनको बहुत दिनों में, हफ्तों में वो एक ही एक खाना होगा जो उनको मिल रहा होता,
0: बिल्कुल।
1: सो वो कर सकते हो, अगर खाना नहीं रख सकते हो, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, पानी रखो, एक बाउल, कोई भी एक बाउल, एक मटका पानी भर के आप रखो। इतना कभी कभी वेदर ऐसे वैसे होता है, उनको एक पानी मिलता है, काफी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो कुछ भी नहीं है, वो अगर आपके पास आते हैं, दे आर वैगिंग द टेल व्हेन यू आर वॉकिंग, डोंट शू देम, जस्ट लुक एट देम, इफ दे आर ओके विथ योर टच, इफ दे कम देमसेल्व्स नियर यू, पेट देम, दे डोंट नीड, दे आर ओके बींग हंग्री, ओके बींग थर्स्टी, व्हेन यू पेट देम देयर डे इज मेड,
0: that's enough,
1: welcome them, that is enough. So we have many ways to be kind, and all this has been a part of our culture, of our society, of our upbringings. All of us have been taught this. We just forget this as we grow,
0: truly, and become so self-centered and self-absorbed.
1: Exactly.
0: Yes,
1: exactly.
0: Yes. Beautiful ma'am. जाते जाते ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट एक सरफेस व्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर हाल ही में, उस पर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर आप उससे साझा करना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा?
1: पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबको समझ में नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग जो एनिमल को हेट करते हैं वो समझते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया उनको उठा के फेंक दो। नहीं, वो नहीं है, इट इज नॉट दैट। ओनली फ्यू प्लेसेस मेंशनड लाइक हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओवर देयर वेयर द क्राउड्स, ह्यूमन क्राउड्स गेट मोर दिस वन एंड मोर ऑफ एन वल्नरेबल पीपल आर देयर लाइक पेशेंट्स और किड्स हु आर नॉट फेमिलियर टू हैंडल, वहां से उनको निकालना है। उसका ये मतलब नहीं है हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, सोसाइटी से निकाल सकते हैं, आरडब्ल्यूए में रूल्स बना सकते हैं, नहीं, ये गलत है। पहले रूल्स को समझिए, पहले ये कीजिए। सेकंड थिंग, आज ये चर्चा हो रही है, आप लोग अगर समझ रहे हो, जो जिनको डॉग्स अच्छे नहीं लगते, अगर समझ रहे हो कि आप जीत रहे हो, नहीं, इसमें हार हमारी और हमारे सिस्टम की है, एनिमल्स की नहीं है. हमने उनको टाइम पे स्टरलाइज किया होता, हमने उनको अच्छे से वैक्सीनेट किया होता और रखा होता, देन वी वुड हैव बीन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी टुडे. हम फेल हुए यहाँ पे, वो फेल नहीं हुए. वो उनको नहीं पता है क्या करना है, उनको नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाना है, खटखटाना है, ऑपरेट करवाना है अपने आप को, या फिर अपने को वैक्सीन लेना है. उनको नहीं पता था. हम फेल हुए यहाँ पे, तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है इसमें. एंड थर्ड थिंग, ऐसा जब भी मेजर रेवोल्यूशन आता है, हमने बहुत सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में देखा है कि लोगों के दिल बड़े होते हैं, खोलते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं. जहां ये लोग सफर कर रहे हैं, जहां पे एक सिस्टम बन रहा है कि उनको यहां से हटाना है और कहीं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इनटू अ नॉन एग्जिस्टिंग और नॉट इवन फंक्शनल शेल्टर्स और विच इज नॉट इवन देयर, विच कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस टूडे वी हैव, आई वुड रिक्वेस्ट अवर पीपल, माई फ्रेंड्स एंड माई कंट्रीमैन टू ओपन देयर डोर्स लिटिल मोर काइंडर, बिकम लिटल मोर काइंडर, ओपन. इतने डॉग्स नहीं है जितने हमारे घर है इंडिया में. एक एक भी खोलेंगे, एक एक भी एक एक सोसाइटी खोलेगा, एक एक भी एक अपार्टमेंट में एक एक दो डॉग रखेंगे, वी विल सेव देम ऑल. न्यूटर करो, उनको वैक्सीनेट करो, उनको खाना पीना प्रोवाइड करो, उनकी पॉपुलेशन ह्यूमनली कम होती जाएंगी. एंड हमारे बच्चे भी वही काइंडनेस साइंस से, साइंस थ्रू ये काइंडनेस मेंटेन करना सीखेंगे. एंड हम बच्चों के सामने मारपीट करके ये सब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी उनको डिपिक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट शो देम दिस काइंड ऑफ सोसाइटी. यस,
0: ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच. आपका मैसेज, आपकी बातें, आपकी सोच, आई एम श्योर आज SN रेडियो के जरिए हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट होके जरूर होगा. यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी सोच है. क्रिश की यादें और आपका अडॉप्ट डोंट शॉप का संदेश हम सबके दिल में जरूर पहुंचा है मैम. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्रेरणादायक बातें, इतनी विजन बातें, इतनी खूबसूरत मैसेजेस हमारे साथ साझा करने के लिए.
1: थैंक यू.
0: तो दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर. आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग. याद रखिए, एक छोटा सा प्यार, एक छोटी सी कटोरी पानी, एक वक्त का खाना या अपनेपन की एक जुबान पूरी दुनिया बदल सकती है. अडॉप्ट इफ यू कैन and care always, and सबसे ऊपर choose kindness. नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी pet story के साथ.
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई

0: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। हकुना मटाटा, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
2: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से। पिता के अचानक निधन के बाद जब परिवार के 14 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी तो उसने परिवार चलाने के लिए एक किराने की और पीसीओ की दुकान खोली। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक दिन ये युवा 15 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरों को तरह तरह की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगा। ये उद्यमी हैं नवीन तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर महज साधारण सी शुरुआत करके साझेदारी में स्क्रैम्बल नाम की कंपनी खोल दी। वैचारिक दृढ़ता और शानदार सोच का अटूट समर्पण की शक्ति के साथ खड़ा स्क्रैम्बल आज लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। एक छोटे से किराना स्टोर से एक संपन्न उद्यमी तक नवीन की यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए, जिनमें एक सख्त बॉस से निपटने से लेकर कई नौकरियों में पदोन्नति पाने के उतार चढ़ाव वाले दौर शामिल है। बाद में नवीन ने अपने करियर के रुख में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माइकल पेज और नेटिव नामक एक एचआर कंपनी में काम किया। इस दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उथल पुथल रही। पहली पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घर वालों ने शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। स्क्रैम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिन्हें बात करना आता है, अक्सर उठकर चल देते हैं वो लोग जिन्हें संभल कर चलना आता है, अक्सर झुक कर चलते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी को जीना आता है, अक्सर जिद नहीं करते वो लोग जिन्हें प्यार से रहना आता है, अक्सर गुस्सा नहीं करते वो लोग जिन्हें अपनों में रहना आता है, अक्सर खुश रहते हैं वो लोग जिन्हें बेपरवाह रहना आता है, पर सुनो, अक्सर दुखी रहे हैं वो लोग जिन्हें दूसरों की परवाह करना आता है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद जी के पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पास खड़े हुए एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने ये सीखा कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना ज्यादा सही है। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी कि यदि कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो।

अनुशासन हमारे भीतर की प्रेरणा से उपजता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं, उत्साहित हैं, तो हमारा डिसिप्लिन दूसरी सभी चीजों को संभाल लेता है। अब भले ही हमें ऊब हो जाए, थकान हो जाए या आलस हो जाए, अगर कोई काम करना है तो उसे करते रहना ही डिसिप्लिन कहलाता है। देखिए, किसी काम को करने की जरूरत, उसके पीछे के अच्छे कारण, उससे मिलने वाली संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सभी हमें उस काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना? हमेशा के लिए यानी परमानेंट कुछ होता नहीं है। जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव का एक चक्र है। यह एक तरीके का गोल समझिए, घूमने वाला झूला टाइप्स है। खुद पर या अपनों पर अगर बुरा समय आ जाए तो बड़ा दुख होता है। तब यह समझने की जरूरत होती है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, नथिंग इज परमानेंट। कठिन समय के बीच एक दूसरे का हाथ थामे, साथ साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। आप देर तक पूरी तरह अकेले कभी रहते ही नहीं, आइसोलेशन में ज्यादा रह नहीं सकते आप। कहा जाता है कि नरक के रास्ते भी कट जाते हैं अगर हम चलना जारी रखें। मौकों की दस्तक तभी होती है भैया, जब हम दरवाजे बनाते हैं। वाह, देखिए, कोई बैठे बिठाए अच्छे मौकों को थाली में परोसकर हमें देता नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है। इससे केवल हमारे समय, ऊर्जा और योग्यता का नुकसान ही होता है भाई। किसी और का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें। यह बात भी ध्यान रखें कि हम अपनी किस्मत बनाते हैं, किस्मत हमें नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? स्टूडेंट ने कहा, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर ने पूछा, अच्छा तो दूसरा कदम किसने रखा था? स्टूडेंट बोला, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा तो था नहीं वो। What?

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जब गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के पहले श्रेणी के डब्बे में प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव बहुत ज्यादा था। पहली श्रेणी के डब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत ही नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डब्बे का टिकट है। फिर भी उनसे काफी बहस की गई और क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने महात्मा गांधी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और यही हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया।

0: कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: अजय मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम
2: भारत की एमसी मैरी कॉम ने पांचवी अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुटा कुटा को 7-1 से हराया है।

0: भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
1: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
0: हाँ?
1: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
2: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।
3: कमाल, बहुत कमाल।

0: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
1: दो साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज चार महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरीकॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरीकॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
2: Interesting. I can see a great cheering crowd. Mario of the United States has punched to the right. Marycom of India defended very well and punched back. And now, showers of punches from Mary.
0: आश्चर्य की बात है कि मैरीकॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999

1992 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है, ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
0: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
1: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
0: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट जंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाईं।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शा वाले भैया, एम्बेसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठी बैठी बैठी।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी, जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है, चलो फिर
0: आओ।

0: मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगे।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम?
0: अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डटकर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।

वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती।

0: 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती तो?
1: तो मैं गायिका होती, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 10 के अभिल 90.8 FM जाबुआ की आवाज़।

मार्च का महीना है। होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिलने, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु,

गया वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हाँफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी।
1: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुबैया,
1: मैं थोड़ा सुस्ता लूं।
2: ठीक है,

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने, सच सुनिए।
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने। चलो संभल कर।
0: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: सामने देखो, सूर्य की किरणों का कमाल।
1: वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं।
0: वाह, हम यही कोई समुद्र तल से 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंदी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां, एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे। तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

हम लोग टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: जहां सब कुछ जमा हुआ है वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थीं।

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी। सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबू जी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा

चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टानें काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब, वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है, अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचे।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह,
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई, पट्टू के कोट होते हैं। रात में पड़ाव पर आग जलाते हैं, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता है, और हमारे कुत्ते तो रक्षा करते ही हैं साहब।
0: अच्छा ये बता भूला कि सबसे लंबा पड़ाव किन क्षेत्रों में होता है?
2: साहब सबसे लंबा पड़ाव पीर पंजाल के पहाड़ों में रहता है।
0: पीर पंजाल?
2: जी, पीर पंजाल के पहाड़ों में डेरा डाल देते हैं, तंबू ही हमारा घर होता है। हम बकरवाल लोगों का जीवन तो घास फूस पानी चरागाह से जुड़ा हुआ है ना साहब।
0: लंबे पड़ाव के समय तुम क्या काम करते हो?
2: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
0: अच्छा।
2: यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
0: अच्छा,
1: शहर भी।
0: बहुत अच्छे।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: एक कैसा निजाम है कुदरत का, एकाएक ये फूल कहां से? भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं,
1: पर क्यों?
0: एक खास वातावरण के कारण।
1: अब मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो सुभैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
1: हाँ।
0: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
1: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब समझा।
0: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: उनके करीब गया।
1: सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हमें से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माना हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब। माना हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह,
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है साहब।
0: अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा। और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते।
3: बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें समान हैं, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर, ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है, शायद अपनी आप भी थी।
4: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे यमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूं, जो उत्तरकाशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहां पंजाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहां बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। ऊंचाई कहीं 3,000 मीटर तो कहीं 4,000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूँ। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
3: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा, और साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने।

0: खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारी हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें क्या हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है जो दोस्त है वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तीन प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
3: नमस्कार,
2: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
4: नमस्कार,
2: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
5: नमस्कार।
2: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आमतौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
0: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
3: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17

0: आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे डीएपी से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़ोहार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
1: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
2: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसा कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
1: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या स्तर।
3: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
0: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है।
1: जी,
0: और
1: जी।
0: खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है।
2: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाते हैं, जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सबका हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
3: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
0: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
3: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, एक और 300 तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
1: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है। और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनका जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
0: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पे ये बताया जाता है कि 4:2:1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक है इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का। यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए अब क्या उन्हें करना चाहिए?
2: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट से हरी खाद है उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी? वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है पीलेपन में आ रहा है उसका हरा रंग कम आ रहा है तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे, अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना यह भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है और इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है और किसानों को
2: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल,
1: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये कदम उठाया गया है।
2: किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताएं।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
3: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हैं, जल में विलेय फर्टिलाइजर हैं, उनका आप बड़ी आसानी से बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
2: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें।
4: देखिए, जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरक पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
1: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरक के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
3: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपके अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
3: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
2: बिल्कुल,
1: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहें, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।
4: देखिए जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
2: जी जी।
4: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
2: जी।
4: तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रखकर हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम न केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
2: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
5: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे, तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक स्रोत डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भिल्लो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है, आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
1: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जानें। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
1: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसपे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
5: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर जहां

0: मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो पर एक दिल से जुड़ा हुआ शो, आपका अपना जिंदगी के रंग गीतों के संग, आपकी अपनी आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर के साथ। दोस्तों, जिंदगी कभी सीधी नहीं होती, कभी खुशियों से भरी होती है, कभी इम्तिहान लेती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली शख्सियत, मिसेस विनीता सोमानी जी, एक होममेकर, एक सोशल वर्कर, एक बेकर और एक एंटरप्रेन्योर, बट सबसे बढ़कर एक फाइटर, एक सच्ची फाइटर। तो आइए मिलके वेलकम करते हैं विनीता सोमानी जी का।
2: यस तनुषा,
1: तो विनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
2: थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ आपसे बात करना, सब लिसनर्स से बात करना, एंड शायद मैं कुछ किसी की एक की भी जिंदगी सुधार पाऊँ तो बहुत खुश नसीब समझूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, जिस जज्बे से आपने अपनी जिंदगी जी है, आई एम श्योर आप एक नहीं 100,000 लोगों के जीवन को टच करते हैं और हम इक्वली एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, बिकॉज आप एक इतनी स्ट्रांग, इतनी क्लियर और इतनी लेवल हेडेड शख्सियत हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर

0: श्रोतागण भी बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए डीप डाइव करते हैं आपकी जिंदगी में मैम। पहला सवाल हमारा यही है कि आपने जीवन में बहुत लंबा सफर एक होममेकर के रूम में बिताया, मतलब आपके लिए बहुत लंबा टाइम आपने घर में, अपने घर को संवारने में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बड़ा करने में, उनको आगे ले जाने में, अपने आप को भूल के उस सब प्रोसेस में लगाया, लेकिन साथ ही आप हमेशा सोशल कॉजेस से हमेशा एक्टिवली जुड़े रहे। वही वो एक ऐसा पार्ट था आपकी लाइफ का जो हमेशा एक्टिव रहा, इवन इफ वो फोरफ्रंट पे नहीं था। तो ये जो सेवा का जज्बा है, ये क्या आपके बचपन से जुड़ा हुआ है? कोई ऐसा इंस्टेंस है आपके बचपन का, या कोई घर का माहौल ऐसा है जिसने आपके अंदर ये जज्बा जगाया, या सिर्फ समय के साथ आपके अंदर ये जज्बा जगा? किस तरह से आपके अंदर ये जो ह्यूमेन कॉन्सेप्ट है, ये जो ह्यूमेन टच है आपकी पर्सनैलिटी का, ये कैसे डेवलप हुआ?
1: यही बोलूंगी कि देखिए, बचपन से जो देखते आते हैं उसका असर जरूर पड़ता है आपकी जिंदगी में। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत परोपकारी थे। मेरे फादर तो गरीबों के, जैसे बोलते हैं, मसीहा जैसे थे। बहुत, वो शायद अमीरों के किसी फंक्शन में ना जाए, लेकिन अगर स्टाफ के किसी ने बुलाया है तो वो 100% जाते थे। और वो यही कहते थे, बेटा बड़े फंक्शन में कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। लेकिन गरीबों, मतलब गरीब नहीं बोलूंगी, बट थोड़े से जो अंडरप्रिविलेज्ड है, उनके यहाँ जाओगे तो वो बहुत, जो स्वागत आपको वहां मिलता है ना, उससे आपको आंखें भर आती हैं। फ्रेंकली वो बहुत ज्यादा करते थे। मंदिर में बहुत विश्वास रखते थे। मंदिर में जितने लोग भी गरीब लाइन से बैठते थे, एक थैला भर के चेंज ले जाते थे, सबको देते थे रास्ते भर में। तो ये देखते देखते कहीं ना कहीं किसी मन के किसी या दिमाग के किसी कोने में ये सब बातें बैठ जाती है। और फिर उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि आपकी कमाई का एक हिस्सा दान में जरूर जरूर देना चाहिए। कभी भी देने से कम नहीं होता है, आपकी इनकम हमेशा बढ़ता है। आप दो दोगे आपको 10 मिलेगा। एंड बिलीव मी, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है कि कभी लगता है कि अरे ये डिमांड आई है किसी संस्था की, लेकिन इतना दे दें कैसे देंगे, बट देते हैं एंड यू वोंट बिलीव, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ये एक शुरू से देखते आए हैं। और फिर दूसरा, मेरे मम्मी पापा कैंसर से पीड़ित थे दोनों, तो उनकी तकलीफ देख के ना बिखरी जाती थी, और उस समय इतनी एडवांस दवाइयां भी नहीं होती थी। फिर जब वो लोग गुजर गए तब, और मेरा शादी हुई, तो ये जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे फिर मैं अपनी सेवाएं देने लगी। ये नहीं सोचा था कभी कि मैं भी इस तकलीफ से गुजरूंगी, लेकिन हाँ, उनके बीच पेशेंट्स के बीच बैठ के उनको समझाना, जो बहुत फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उनके गांव वालों को समझाना कि मत अपना जिंदगी खराब करो, मत सब कुछ दांव पे लगाओ, ये तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज नहीं है अब उपाय कुछ। तो ये सब करने में बहुत तसल्ली मिलती थी, बहुत बहुत तसल्ली। तो एक तरह से देखिए, बीच तो बचपन में ही बो दिया था माँ बाप ने, और धीरे धीरे फिर एक करते करते करते करते मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो यही सब करते हुए आई थिंक यही है।
0: तो कैसे आपने अपने जीवन में फिलोंथ्रोपी को किस ब्यूटीफुल तरीके से अपनाया, अपनी फैमिली में देखे, अपने फैमिली के स्ट्रगल्स देखे, और उसको अपने आप के अपने जीवन में एक इम्पेडिमेंट नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज किया। और यही मैं हमारे श्रोताओं को कहना चाहती हूँ कि जीवन में जब स्ट्रगल्स आते हैं तो वो आपका इम्तिहान लेते हैं, इस तरह कि आप अपने आप को एक बेटर वर्जन की तरफ लेके जाएं। जिस तरह के एक्सपीरियंसेस विनीता जी ने अभी हमारे साथ साझा किए, मैम आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस ऑफ योर पेरेंट्स। मैं समझ सकती हूँ किसी पेरेंट को लूज करना क्या होता है, बट आपने बहुत ही ग्रेस के साथ अपने इस पूरे लॉस को डील किया है, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण इस स्ट्रेंथ से कुछ प्रोत्साहन लें और अपने जीवन को इसी तरह शेप करें कि जब कोई परेशानी आए, चाहे हेल्थ की, चाहे फाइनेंशियल, चाहे किसी भी तरह की, तो उसको एक इम्पेडिमेंट से ज्यादा अपने लिए एक फ्यूल की तरह यूज करें और आगे बढ़ें, और अपने साथ साथ और लोगों के जीवन को संवारें। तो दोस्तों, जब जिंदगी इम्तिहान लेती है, हौसला ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सुनते हैं हमारा आज का पहला प्रेरणा देने वाला गीत, रफू, फिल्म तुम्हारी सलूक।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक विनीता मैम। मैम, आपने 2010 में जब पहली बार ब्रेस्ट कैंसर आपको डायग्नोज हुआ और उससे आपने डील किया अपने जीवन में, तो वो पल आई एम श्योर बहुत मुश्किल होंगे, बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए होगी उनसे डील करने के लिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो उस वक्त आपका क्या मंत्रा था? आई एम श्योर मैं नहीं चाहती कि आप बार बार उस स्टेज पे जाएं, बट बिकॉज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमें सुन रहे हैं वो हमसे इंस्पायर हो, हमारी कॉन्वर्जेशन से कुछ लेके जाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका स्ट्रेंथ का मंत्रा उस समय क्या था, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दी और कैसे आपने इस पूरे प्रोसेस 2010 को डील किया?
1: सच बताऊं तो बहुत बहुत मुश्किल था। मैं कलकत्ता जाने वाली थी कोई शादी में, और एक चीज यहाँ शेयर करूंगी कि मैं बहुत ससेप्टेबल थी, ये मेरे को बार बार गांठ हो जाती थी कुछ सालों से। तो बार बार मैं दवाइयां लेती थी या डॉक्टर एस्पिरेट करता था, एस्पिरेट मतलब एक नीडल डालते हैं, लिक्विड निकालते हैं, तो वो गांठ बैठ जाती थी
0: जी।
1: तो इस बार 2010 में जब हुआ तो मेरे को वही लगा कि ठीक है, जैसे हमेशा ही होता है इस बार भी होगा। हमने अपने टिकट करा लिए शादी में जाने के लिए। फिर अब मैं भूल गई कि मेरी रिपोर्ट आने वाली है। मैं तो अपना पैकिंग वैकिंग करके करी थी, फिर मेरे हस्बैंड आए कमरे में, बोले कलकत्ता कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आई डिन याद ही नहीं आया कि भाई अच्छा इस वजह से भी कुछ हो सकता है। तब बोले कि टेस्ट तो आपका पॉजिटिव आया है। फिर तो जो आंसुओं की झड़ी लगी है, मैं उस समय तो कोई स्ट्रेंथ वेंथ नहीं थी, सच्ची बताऊं आंसू ही आंसू थे। तो बाद में तो मैंने डॉक्टर्स को बताया, तब बोले कि तुम्हारी टंकी में पानी बचा है कि बचा है, या तुमने अपने आंसुओं से ही भर लिया? ये जरूर था, उस समय बहुत हिल गई थी मैं, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करी। लेकिन जब मैंने फिर अपने आप को संभाला, यही सोचा कि इस तरह से मैं अगर टूटूंगी तो हस्बैंड बच्चे सब कैसे, मतलब और तो कोई है नहीं परिवार में, बस हम चारों ही हैं, तो कैसे संभलेंगे सब लोग। फिर ये सोच करके, और देखिए मम्मी पापा की तकलीफ भी जब याद आती थी तो दिल बहुत कांप उठता था कि बाप रे इतनी तकलीफ। लेकिन उस समय के दौर में और इस समय के दौर में एडवांटेज ये है कि दवाइयां बहुत एडवांस हो गई हैं, उस समय इतनी दवाइयां एडवांस नहीं होती थी। फिर ये सोच के कि नहीं, अब तो भगवान साथ है, ये जरूर मैं कहूंगी कि कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये मेरा अंत है, ये मेरा पॉजिटिव नेचर बोल दीजिए, या मेरा चिन्मय मिशन की टीचिंग बोल दीजिए, या मैंने विपश्यना जो 2 साल किया है वो बोल दीजिए, कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ ये तो मेरा अंत है
0: जी।
1: परिवार का, दोस्तों का साथ, भगवान में अटूट विश्वास, ये सब मिला के बस यही लगा कि ये परीक्षा की घड़ी है, धीरे धीरे बस हिम्मत रखूंगी तो जरूर निकल जाएगी। इन सब ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया। दोस्तों का साथ, आते थे रोज, बैठते थे घंटों, खाना बना के लाते थे, अपने घर का खाना। तो उस समय जो भी कीमो ईमो से गुजरे हुए होंगे वो समझेंगे कि बहुत तबीयत खराब होती है कीमो में, लेकिन हाँ सबका साथ, ये समय भी गुजर गया बहुत बहुत स्ट्रांगली।
0: बताएं क्या बात है मैम, क्या जज्बा है, और सल्यूट है हमारे सारे कैंसर सर्वाइवर्स को, आपको, और बहुत सारे उन लोगों को जो इस बीमारी से लड़ते हैं। सिर्फ जो उससे गो थ्रू करता है वो समझ सकता है कि वो क्या प्रोसेस होता है और कितना रिग्रस प्रोसेस होता है वो पूरा थेरेपीज का। मैं समझ सकती हूँ किस तरह से वो समय गुजरा होगा आपके लिए, और बहुत सारी संवेदनाएं आपको, और खैर आपने उस समय भी इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, आपके लिए न्यू नॉर्मल हो गया था बेसिकली, वो आपका नॉर्मल था कि हर बार इंजेक्शन लगवाना एंड देन ठीक हो जाना, कि जब एक्चुअली इट हिट यू तो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक्चुअली इट हैज कम, लाइक इट इज देयर टू स्टे। तो ये इटसेल्फ शो करता है कि आपने कितना समझौता किया समय के साथ, कितना एक यू मेड पीस कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत विच इज ब्यूटिफुल एंड विच इज कमेंडेबल, एंड आई एम सो हैप्पी कि यू कुड कम आउट ऑफ इट, एंड आज हम ये बातचीत कर रहे हैं मैम। अब हम थोड़ी पॉजिटिव चीजों की तरफ चलेंगे, जहां पे आपने अपने पैशन को अपना पर्पस बना लिया। आई थिंक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जैसे आपने बताया चिन्मय मिशन से आप जुड़े हैं, यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू हैव अ बिलीफ इन गॉड एंड अनडाइंग बिलीफ एंड फेथ, तो आई थिंक योर स्पिरिचुअल सेल्फ ऑल्सो अलाइंड यू वेरी वेल टू कीप योर सेंटर। जी, तो उसी से अगर जब आपके पैशन की बात करें, आपके कुकिंग की पैशन की बात करें, और एपेटाइट वो शुरू करने की जो आपकी जर्नी थी वो कैसी थी, उसने आपको क्या पहचान दी, और आज जब आपको पूरा देखते हैं, अपने पूरे सफर को देखते हैं, अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है मुश्किलें ज्यादा थी या आपकी अचीवमेंट ज्यादा थी? आपके लिए सफर किस तरह से रहा?
1: उस समय तो अचीवमेंट का तो फ्रेंकली ध्यान ही नहीं आया था, बस ये सोचते थे कि ये साल निकलेगा, पूरा साल लग जाता है ट्रीटमेंट कराने में, रिकवर करने में, तो यही था कि ये साल निकलेगा कैसे। और उस समय परिवार का साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत जरूरी होता है। मेरे हस्बैंड बोले तुम ना गैराज को कन्वर्ट कर देता हूँ, और सब लोग तुमको इतने सालों से मांग रहे हैं क्लास करो तुम पीछे हट जाती हो कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो तुम करो, तो तुम ये साल अपना रिसर्च करो, क्लास शुरू करो, धीरे धीरे करो। क्योंकि कीमो लगती थी, हर हफ्ते 16 कीमो लगी, फिर उसके बाद तबीयत खराब होती थी, फिर 2-3 दिन रिकवर करने में लगता था। अच्छा, उसी साल मैंने मेरी बेटी की शादी भी करी, सगाई की शादी, तो पूरे साल में ये सब कुछ करके, और फिर मैंने एक एक धीरे धीरे करके क्लास करना शुरू करा। वो सर में वो बांधती थी दुपट्टा, क्योंकि कीमो के बाद बाल जाने लगते हैं, और वो जो बाल जाते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो ट्रॉमा शायद दवाइयों से ज्यादा होता है, कि जब वो गुच्छे की गुच्छे आपके हाथ में निकलते हैं ना, वो ट्रॉमा तो
0: बिल्कुल आपकी कॉस्मेटिक जो ब्यूटी है वो पूरी जा रही है आपके आंखों के सामने।
1: तो उस समय तो फिर मैंने विग बनवाया और वो किया, दुपट्टा लगाती थी, सब कुछ, बाहर नहीं निकलती थी
0: जी।
1: तो फिर उसके बाद फिर क्लास कन्वर्ट किया इन्होंने क्लासरूम, तो शुरू में मुझे लगा कि अरे लोग ऐसी सहानुभूति की वजह से मेरे क्लासरूम में आ रहे हैं, चलो इसका हौसला बढ़ाया जाए, इसको इनकरेज किया जाए। लेकिन जब क्लासेस की में स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, क्लासेस की संख्या बढ़ने लगी, तब मुझे खुद पे भी विश्वास थोड़ा ज्यादा बढ़ा कि भाई नहीं, ठीक ही सिखा रही होंगी जो इतने बढ़ रहे हैं, कि मुझे क्लासरूम को एक्सटेंड करना पड़ा गराज को। और फिर धीरे धीरे अवार्ड आने लगे, रिकग्निशन बढ़ी, तारीफ मिली, तो वो सबसे तकलीफ तो मैं फ्रेंकली बिल्कुल भूल गई। इतना मजा आने लगा मेरे को स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सबसे, आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू देम, और मेरे को लगा कि मैं अपना अगर ये कुछ गिफ्ट या हुनर शेयर कर पा रही हूँ, और लोग जैसे जब मैं केटरिंग कर, मतलब सामान बना के भी भेजती थी लोगों को, और जब लोग बोलते थे कि आंटी आपने उसके यहाँ ये सामान भेजा था क्या, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल आपका था, सच मानिए इतनी खुशी होती थी कि भाई यू नो इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, इतना लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो सबसे फिर तकलीफ तो बिल्कुल भूल गई। सच्ची बताऊं वो दौर था तकलीफ का, लेकिन वो सबसे कोई चीज में भी अपने आप को आप इन्वॉल्व कर लें तो आपकी तकलीफ नेगेटिव हो जाती है। लेते लेते सोचते रहे कि अब मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है, तो फिर वो और बहुत बड़ा महसूस होता है।
0: करेक्ट,
1: उसको निगेट करिए, उसके बारे में सोचिए मत, और पॉजिटिव रहिए।
0: बिल्कुल, अपने दिमाग में मेंटल वेब्स मत क्रिएट करिए, अपने पैशन को समझ के उसको फॉलो करिए, ऐसे अंधेरे के समय में भी लाइट ढूंढिए। जैसे मैम ने गराज से शुरू किया, विच इज कमेंडेबल, अगेन मैं बहुत ही अमेज्ड हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे श्रोतागण इसे सुने और समझें कि कई बार हम यही सोच के रह जाते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। आप जो हमें सुन रहे हैं श्रोतागण, आप समझें कि आप अपने घर के गराज से भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, अगर आपका पैशन, अगर आपका जो मोटिवेशन है वो करेक्ट है और स्ट्रीमलाइंड है, और आप सच में कुछ करना चाहते हैं जीवन में। मैम, अगर आपकी कोई फेवरेट रेसिपी के बारे में अगर बता सकें, कोई भी एक रेसिपी जो हमारे श्रोतागण को बता सकें, जो वो नोट कर सकें, और ऑल्सो कुकिंग का जो पैशन है वो आपको बचपन से था या वो अगेन वो विथ टाइम डेवलप हुआ, ये जर्नी कैसे डेवलप हुई? कुकिंग की तरफ जो आपका प्यार है वो शुरुआती दौर से था या कैसे डेवलप हुआ? एंड अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं एक रेसिपी छोटी सी, कोई भी, अगर केक की रेसिपी हो या एनी फेवरेट डिश ऑफ योर्स।
1: जी, तो सच बताऊं तो मैं शादी तक तो पहले तो स्कूल, फिर उसके बाद हॉस्टल, तो मुझे तो दालों के नाम भी नहीं मालूम थे कि ये अरहर, मेरे को सारी पीली दाल एक सी लगती थी।
0: जी हमारी भी यही हालत है, ऑरेंज वाली दाल।
1: एग्जैक्टली, तो ये मालूम ही नहीं था कि कौन सी दाल कैसी है क्या है। शादी के बाद 22 साल में तो शादी ही हो गई थी कॉलेज से निकलते के साथ ही, बट मेरे हस्बैंड इज अ बिग फूडी, उनको बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, मैं कानपुर की लड़की हूँ, वहाँ पे उस समय तक कुछ इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, खाली साउथ इंडियन होता था या नॉर्थ इंडियन होता था, बहुत ज्यादा क्विजींस थे नहीं कानपुर में।
0: बिल्कुल,
1: बट माय हस्बैंड इज वेरी वेल ट्रेवल्ड और बहुत शौक है खाने का, तो साथ साथ जाना उनके हर बार, और फिर शेफ को बुलाना, कैसे बनाया है, क्या है, दल्ला दलाल की किताबें लेके आए, तुम सीखो हाँ। और फिर आपको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि इतनी मैं इन्वॉल्व हो गई, मैं तल्ला दलाल की इतनी जबरदस्त फैन हो गई
0: जी,
1: कि मैंने उनकी सारी रेसिपीज फॉलो करी। आई एम मोर और लेस अ सेल्फ मेड कुक। फिर मैंने उनको इनवाइट किया, मैं एक क्लब की प्रेसिडेंट थी उस समय, शुभम क्लब की। फिर मैंने उनसे उस समय फिर नया नया मैंने ईमेल लिखना शुरू सीखा, उनको ईमेल पे ईमेल, ईमेल पे ईमेल, मैम आपको आना पड़ेगा, मैम आपको आना पड़ेगा। फिर वो आई हमारे पास, रही हम दो दिन का क्लास किया। आई कांट बी मोर थैंकफुल टू माई हस्बैंड टू प्रमोट मी इन दिस सीन। खाने का पूरा क्रेडिट जो मैं दूंगी वो उनको ही दूंगी कि उन्होंने इनकरेज किया। बुरा था तो बोला कि बुरा है, ये नहीं कि नहीं अच्छा ही है तुमने बनाया तो अच्छा है, ऐसे नहीं। अगर खराब है तो बस बहुत खराब है, यू हैव टू इम्प्रूव,
0: इम्प्रूव राइट।
1: हाँ तो ये सब करके
0: एक सही क्रिटिक होना बहुत जरूरी है जी,
1: एक सही क्रिटिक होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हर बात में आप उसका मन करने के लिए तारीफ कर दे
0: जी,
1: सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रेसिपी आप बताइए, केक की तो फिर बहुत प्रोपोर्शन वगैरह चाहिए आपको। मैं
0: एनी इजी रेसिपी जो बहुत बेसिक घर पे हमारे श्रोतागण आज ट्राई कर सके या कल डिनर में ट्राई कर सके।
1: हाँ तो उसको आप ऐसे करें, आप जैसे हम लोग जो चाट बनाते हैं ना
0: जी,
1: तो आजकल मैं चाट को ग्लासेस में देती हूँ।
0: ओ वाओ।
1: तो आप नीचे में हाँ, तो उनको शॉर्ट ग्लासेस में, आपको आपकी अगर आपको बाहर भेजने तो प्लास्टिक ग्लास में भी दे सकते हैं। छोले बनाए या हम लोग मटरा बनाते हैं, मटरा जो सफेद मटर होता है उसको रात को भिगोए, सुबह में 7-8 सीटी दें उसमें, उसको कुछ सेकने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको खाली हल्का सा घी डाल के, जीरा डाल के उसको भून लीजिए
0: जी,
1: और उसमें फिर नमक और हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दीजिए। फिर आप अलग से टिक्किया बना ले आलू की, और अगर आलू में आप मैदा नहीं डाल के कोई और आटा डाल दें या कॉर्नफ्लोर डाल दें तो उससे कुरकुरी भी बनेगी, नुकसान भी कम करेगी। वो टिक्किया बना लें, फिर आप नीचे में हरी चटनी लगाएं, थोड़ी सी मीठी चटनी लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा मटरा डालें, नहीं सॉरी पहले मटरा डालें, थोड़ा हरी चटनी मीठी चटनी, फिर टिक्किया डालें, फिर एक लेयर उसका आप मटरा का दें, और फिर आप थोड़ी सी और दोनों चटनियां दें और ऊपर टॉप कर दें आप धनिया से। इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सब लोग को ना ये ऐसे टिक्की छोला सब जगह खाते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता है, पर उसको एक प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वेरी मच डू दैट ऑल्सो, कि आप खिलाओ लेकिन इसको जब आंखों को से देख के अच्छा लगेगा लोगों को तो जरूर खाने का मन करेगा, लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाने अच्छा लगेगा खाना तो ही लोग दोबारा मांगेंगे, खाली देखने में अच्छा है इसलिए नहीं मांगेंगे। तो देखने में भी अच्छा प्रेजेंट करिए और टेस्ट पे बहुत बहुत ध्यान दीजिए।
0: बिल्कुल, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये टाइम इतना अच्छा है चाट पकोड़े खाने का, एकदम ठंडा ठंडा चाट खाने का, तो बहुत ही फ्लेवर आ गया मेरे मुंह में, मैं जरूर ट्राई करूंगी, आई एम श्योर मेरे श्रोतागण भी जरूर ट्राई करेंगे। और मैम आपके जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो अनडाइंग स्पिरिट है और आपकी जो फाइटर स्पिरिट है कि ये करना है तो करना है, अपने ड्रीम्स को एक प्रॉपर शेप देना, उनको एक क्लैरिटी से देखना और उनपे काम करना, जैसे कि मैम ने बताया कि तल्ला दलाल तक को मैम ने अप्रोच किया, उनको मेल्स पे मेल्स किए और अल्टीमेटली वो जरूर उनके प्रेजेंस में आई, उन्होंने उनके साथ एक मोमेंट शेयर किया। तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जीवन में, अगर आप तय कर लें, अगर आप ठान लें तो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने सही मोटिवेशन, अपने सही एक्शंस के साथ, अपने सही इंटेंट के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत उड़ान रही मैम आपकी। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, किनारे फिल्म क्वीन।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: आपण हंगला भाइयों अने बहनों नमस्कार। મુસે આરજે ભાવના અને તમુ હમલતા રેજો ઝાબુઆનો પહેલો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ। સાથીઓ, આવો હમલ્યો યો ભીલી લોકગીત, ગાયક કલાકાર માલિંગ કટારાની આવાજમાં આરજે ભાવનાની હાથે।

0: Potter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक

बातें। Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata. आइए दोस्तों आपको मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से। पिता के अचानक निधन के बाद जब परिवार के 14 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ पड़ी तो उसने परिवार चलाने के लिए एक किराने की और पीसीओ की दुकान खोली। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक दिन ये युवा 15 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरों को तरह तरह की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगा। ये उद्यमी हैं नवीन तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर महज साधारण सी शुरुआत करके साझेदारी में स्क्रैम्बल नाम की कंपनी खोल दी। वैचारिक दृढ़ता और शानदार सोच का अटूट समर्पण की शक्ति के साथ खड़ा स्क्रैम्बल आज लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। एक छोटे से किराना स्टोर से एक संपन्न उद्यमी तक नवीन की यात्रा महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए, जिनमें एक सख्त बॉस से निपटने से लेकर कई नौकरियों में पदोन्नति पाने के उतार चढ़ाव वाले दौर शामिल हैं। बाद में नवीन ने अपने करियर के रुख में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने माइकल पेज और नेटिव नामक एक एचआर कंपनी में काम किया। इस दौरान उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उथल पुथल रही। पहली पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने नेटिव की सहकर्मी से दूसरा विवाह किया। वर्ष 2021 में जब उन्होंने स्क्रैम्बल की शुरुआत की तो निवेशकों की रुचि कम होने के कारण उनकी पत्नी के घर वालों ने शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई और पहले ही वर्ष में कंपनी ने 4.25 करोड़ का कारोबार कर डाला, जो दूसरे साल में दोगुना हो गया और तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो 15 करोड़ का पहुंच चुका था। फिलहाल उनकी टीम में 56 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अब तक 1000 से ज्यादा ग्राहक कंपनियों के साथ काम किया है। स्क्रैम्बल ने मात्र 3 साल में ही 15 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ये व्यावसायिक विकास उनके व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता और उनकी टीम के समर्पण को रेखांकित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर स्क्रैम्बल ने खुद को रोजगार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिन्हें बात करना आता है। अक्सर उठकर चल देते हैं वो लोग जिन्हें संभल कर चलना आता है। अक्सर झुक कर चलते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी को जीना आता है। अक्सर जिद नहीं करते वो लोग जिन्हें प्यार से रहना आता है। अक्सर गुस्सा नहीं करते वो लोग जिन्हें अपनों में रहना आता है। अक्सर खुश रहते हैं वो लोग जिन्हें बेपरवाह रहना आता है। पर सुनो, अक्सर दुखी रहे हैं वो लोग जिन्हें दूसरों की परवाह करना आता है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद जी के पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पास खड़े हुए एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने ये सीखा कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना ज्यादा सही है। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी कि यदि कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो।

अनुशासन हमारे भीतर की प्रेरणा से उपजता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं, उत्साहित हैं, तो हमारा डिसिप्लिन दूसरी सभी चीजों को संभाल लेता है। अब भले ही हमें ऊब हो जाए, थकान हो जाए या आलस हो जाए, अगर कोई काम करना है तो उसे करते रहना ही डिसिप्लिन कहलाता है। देखिए, किसी काम को करने की जरूरत, उसके पीछे के अच्छे कारण, उससे मिलने वाली संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सभी हमें उस काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना? हमेशा के लिए यानी परमानेंट कुछ होता नहीं है। जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव का एक चक्र है। यह एक तरीके का गोल समझिए, घूमने वाला झूला टाइप्स है। खुद पर या अपनों पर अगर बुरा समय आ जाए तो बड़ा दुख होता है। तब यह समझने की जरूरत होती है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, नथिंग इज परमानेंट। कठिन समय के बीच एक दूसरे का हाथ थामे, साथ साथ निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। आप देर तक पूरी तरह अकेले कभी रहते ही नहीं, आइसोलेशन में ज्यादा रह नहीं सकते आप। कहा जाता है कि नरक के रास्ते भी कट जाते हैं अगर हम चलना जारी रखें। मौकों की दस्तक तभी होती है भैया, जब हम दरवाजे बनाते हैं। वाह, देखिए, कोई बैठे बिठाए अच्छे मौकों को थाली में परोसकर हमें देता नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है। इससे केवल हमारे समय, ऊर्जा और योग्यता का नुकसान ही होता है भाई। किसी और का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें। यह बात भी ध्यान रखें कि हम अपनी किस्मत बनाते हैं, किस्मत हमें नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? स्टूडेंट ने कहा, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर ने पूछा, अच्छा तो दूसरा कदम किसने रखा था? स्टूडेंट बोला, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा तो था नहीं वो।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। जब गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता था। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के पहले श्रेणी के डब्बे में प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव बहुत ज्यादा था। पहली श्रेणी के डब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत ही नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डब्बे का टिकट है। फिर भी उनसे काफी बहस की गई और क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने महात्मा गांधी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और यही हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया।

0: hotter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल फिर मिलता हूँ।

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव।

0: यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी में तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी, मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की। उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
3: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है, तेरे लहजे की थकन में तेरा दिल शामिल है। ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ गई दोस्त, बारिशें संग का मौसम है, बारिशें संग का मौसम है मेरे शहर में। तू ये शीशे का बदन लेके कहाँ से आ गई दोस्त, मैं उसे अहदे शिकन कैसे समझ लूं, मैं उसे अहदे शिकन कैसे समझ लूं जिसने आखिरी खत में ये लिखा था, फकत आपकी दोस्त। नमस्कार, आदाब। रात के इस फैलते जा रहे अंधेरे में, जब दुनिया धीरे धीरे सोने की तैयारी में है, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक, सिर्फ और सिर्फ 90.8 SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील पर। दोस्तों, घड़ी में अब 10:15 से कुछ एक मिनट ऊपर हो गया होगा। आप सबने डिनर तो कर ही लिया होगा अब तक, किचन भी समेट लिया होगा और बेड भी बना लिया होगा। तो क्या आपने कमरे की बत्ती को भी बंद कर दिया आपने? थोड़ी मध्यम कर दीजिए, आराम से तकिए पर सर रख कर लेट जाइए, या दो दो तकिए रख कर बेड के साथ टेक लगा कर औंधे लेटे और आधे बैठे जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि अब ये वक्त भाग दौड़ का नहीं बल्कि खुद को सुकून देने का है। दोस्तों, हर रोज़ तो कमोबेश इसी हाल में होते होंगे, पर आज मैंने भी आपको बता दिया कि मैं भी जानती हूँ थोड़ा बहुत आपको। आखिर आप सब मेरे दोस्त ही तो हैं। तो चलिए, आज की शाम आप सब दोस्तों के नाम मैं रोज़ ही आपके लिए चुन चुन कर गज़लें लाती हूँ और अपने ख्यालात आपसे शेयर भी करती हूँ। आज सोचा क्यों ना कुछ आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाए, लिहाजा ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम होने वाला है। कुछ चुनिंदा गज़ल जो कुछ दोस्तों ने फरमाइश की और मुझे मैसेज किया, और मैं उन चुनिंदा रूहानी गज़लों को आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की ये शाम, ये सुर और ये एहसास पूरी तरह आपके पसंद के नाम, आपकी नज़र हैं। तो बस अपनी आँखें थोड़ी थोड़ी बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और खो जाइए हमारी इस पहली फरमाइश के सुरों में। सबसे पहला मैसेज व्हाट्सएप पर जो मुझे मिला वो है हमारी दोस्त कविता देशपांडे का। कविता देशपांडे जी बेंगलोर में रहती हैं। कविता लिखती हैं कि वो इस वक्त एक ऐसी गज़ल सुनना चाहेंगी जो उनके दिल को पूरी तरह सुकून से भर दे। माय डियर कविता, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत लाजवाब है। क्योंकि आज की शाम को और भी ज़्यादा नशीला और गहरा बनाने के लिए मैं जो नगमा लेकर आई हूँ उसके तो बोल ही शुरू होते हैं सुरमई शाम से। ये गज़ल हमारे महान संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत से सजी है। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाजों से महकती और हमारे खास गुलूकार सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में फिल्म लेकिन से है। तो पेशे खिदमत है कविता देशपांडे की पसंद पर आप सभी सुनने वालों की नज़र ये रूहानी गज़ल। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तो यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है। जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए।

होने देते हैं। चांद भी अब तक निकल आया होगा, तो ऐसा नगमा महफिल में गूंजना चाहिए जो इस रात की खूबसूरती को जैसे मुकम्मल कर दे। तो दोस्तों, अरुणा महेश्वरी की पसंद पर अब गूंजने जा रही है गजल के बादशाह जगजीत सिंह जी की पुरसोज आवाज में एक बहुत ही रूहानी गजल, जिसे सुनकर दिल का हर कोना मचल उठता है। ये उनकी एल्बम मिराज से ली गई है। आपकी नजर अरुणा की पसंद जगजीत जी की आवाज में ये गजल। तुम्हारे ख्यालों की अंगड़ाइयों में, तुम्हारे ख्यालों की अंगड़ाइयों में मेरी याद के फूल महके तो होंगे, कभी अपनी आंखों के काजल से, कभी अपनी आंखों के काजल से तुमने मेरा नाम लिखकर मिटाया तो होगा, कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर, कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर तुम्हारे तसव्वुर में आया तो होगा, किसी से तो की होगी तुमने मोहब्बत, किसी को गले से लगाया तो होगा।

चौदहवीं के चांद को देखने के बाद आप सब भी महफिल की रोमानियत में खो गए होंगे। हमारा अगला मैसेज है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त पूनम अरोड़ा का, जो गुड़गांव यानी गुरुग्राम में रहती हैं। वो मल्टी टैलेंटेड खातून हैं दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड हैं, योगा सिखाती हैं, क्रोशेट की निटिंग सिखाती हैं और बहुत बेहतरीन गाती भी हैं। उनकी खास पेशकश वाकई बहुत खास है। अब जबकि रात गहराती जा रही है तो किसी के इंतजार का दर्द और फिर उसके आ जाने की खुशी दोनों ही बहुत खूबसूरत एहसास हैं। इंतजार के बाद जो मिलने का सुकून है उसे लफ्जों में पिरोना किसी आम शायर के बस की बात नहीं। तो अंदलीब शादानी के ये खूबसूरत अल्फाज सुने हमारे जगजीत जी की रूहानी आवाज में, उन्हीं के संगीत में रचे बसे। पूनम अरोड़ा की खास पसंद पर शफक धनुक महताब घटाएं, शफक धनुक महताब घटाएं। जगजीत जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया इस गजल में इन इन इन लफ्जों का। शफक यानी किरणें, धनुक यानी रेनबो, महताब यानी चंद्रमा और घटाएं तो आपको मालूम ही हैं। तो वो कहते हैं शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है। सोचिए रुमानियत की इंतहा है। कहते हैं उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।

तो हमारी दोस्त गीता मनी की पुरजोर फरमाइश पर पेश खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन साहब की ये पुरसोज गजल। फरमाते हैं, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र ओ करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र ओ करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन फिर फरमाते हैं, चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

बात को सुलझाते सुलझाते दोस्तों, वक्त आ पहुंचा है हमारी आखिरी फरमाइश के पूरे होने का। और भला इनबॉक्स में मैसेज किसका है? ये मेरी बहुत ही प्यारी बेहतरीन उषा नागराजन, जो कि एक बहुत बेहतरीन गायिका हैं। वो हैदराबाद में रहती हैं। अंजना की तरह वो भी हम ख्याल हैं। उसी जगह सिंगिंग प्रोग्राम में मैंने उन्हें सुना और उनकी आवाज़ मेरे दिल को छू गई। यहाँ SN रेडियोज पर भी उनके दो प्रोग्राम एयर हो चुके हैं। आज के कलाकार में वाहवाही बटोरने के बाद तमिल सॉन्ग्स के प्रोग्राम में भी वो अपनी धाक जमा चुकी हैं। तो आइए देखें उषा ने क्या मैसेज भेजा है। जी दोस्तों, जैसी उनकी शख्सियत बिल्कुल वैसी ही उनकी पसंद है। उषा ने फरमाइश की है, सब रूहानी

और रोमानी गज़लों के बाद इस तरह का कोई शाहकार होना चाहिए कि रूह भीग भीग जाए। और उन्होंने इसके लिए चुना है पद्म भूषण से सम्मानित बेगम परवीन सुल्ताना जी को। और जब बेगम परवीन सुल्ताना जी की शास्त्रीय और मखमली तान पर सदियों के सबसे महान शायर मिर्ज़ा गालिब के अल्फाज तैरते हैं तो संगीत खुद ब खुद सजदा करने लगता है। इस गज़ल में गालिब साहब का जो अंदाज है और जिस खूबसूरती से बेगम साहिबा ने उसको गाया है, बस वो सीधे रूह तक उतर जाता है। मिसरा मुलाजा फरमाएं, इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया, दिल कहाँ की गुम कीजिए, हमने मुद्दाए पाया। तो मेरी बेहद अजीज दोस्त उषा नागराजन की फरमाइश पर आज की इस पूरी होती शाम अल्फाज से एहसास तक के इस सफ़र में मेरे साथ जाग रहे आप सभी प्यारे दोस्तों की नज़र पेश खिदमत है मोहतरमा परवीन सुल्ताना की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब का ये कलाम। कहते हो ना देंगे हम, कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ की गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया।

वाह, क्या जादुई आवाज थी और क्या बेमिसाल अल्फाज थे बेगम परवीन सुल्ताना जी की इस रूहानी तान के साथ। अब हमारी इस खास महफिल के सुर मुकम्मल होते हैं। दोस्तों, आज का ये सफर वाकई बहुत कमाल का था। कविता देशपांडे जी से शुरू हुआ, अरुणा, पूनम, अरुण, अंजना, गीता मणि और उषा नागराजन, आप सब की इन चुनिंदा गज़लों ने आज की रात को आम रातों से बिल्कुल जुदा और बेहद हसीन बना दिया। आप सभी का शुक्रिया जो अपने इनबॉक्स के ज़रिए आपने एहसासों को हमारे प्रोग्राम तक पहुंचाया। दोस्तों, आप भी अगर कोई अपनी फेवरेट गज़ल को सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर उनको शामिल करूंगी। लेकिन अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मुझे आपसे विदा लेनी है। रात और गहरी हो चुकी है, आप तक क्या सरका के लेट भी सकते हैं और ख्वाबों की दुनिया में लैंड भी कर सकते हैं। जाने से पहले आज की रात की आखिरी बात आपके सिरहाने छोड़े जा रही हूँ कि सो जाइए, अब की रात बहुत हो चुकी। सो जाइए अब की रात बहुत हो चुकी है, ख्वाबों के शहर में आपकी बात बहुत हो चुकी है। आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय अब आपसे इजाज़त चाहती है। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। अपनों का ख्याल रखिए और खुद से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
7: नमस्कार,
6: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
8: नमस्कार,
6: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
9: नमस्कार।
6: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
7: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
6: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
8: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
6: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या इस पर।
9: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जो हवा में पाए गए उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
10: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
7: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको प्रभावित करता है।
10: डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
8: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सबका हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, इस दिशा में बहुत

0: कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
1: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गॉइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका इस जल का प्रयोग किया जाता है।
2: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
1: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
3: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: जी बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश धारी जो उर्वरक है, इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बढ़वार हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
3: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
0: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है, उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है, जैसे ये है, ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है, यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर। कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन, इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए, आगे भी कर रही है और किसानों
2: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारी जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल,
1: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
2: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
3: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
2: जी।
3: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हैं, जल में विलेय फर्टिलाइजर हैं, उनका आप बड़ी आसानी से बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
2: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें बताएं।
4: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
1: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सकें, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरक के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
3: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपकी अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
3: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
2: बिल्कुल,
1: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहने फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।
4: देखिए जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
2: जी जी।
4: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
2: जी।
4: तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवाएं जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
2: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
5: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे, तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपनी जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटा भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइटा भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिन्नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है? आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना ले और आप अपने खेतों में लगाएं। अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार ही फायदा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बाद
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार।

0: ये वाक्य था, उसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा, जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इश्यू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
1: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
0: इसमें, जैसा कि भटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस प्रकार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल, डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र

0: आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
1: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
2: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो उसे 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
10: हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हमारा आप तक खेती बाड़ी के माध्यम से भिन्न भिन्न खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो हमारा किसान है वह अपनी आय में वृद्धि करे, साथ ही अपनी आजीविका को सशक्त बनाए और हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों को समझे और पर्यावरण के अनुरूप खेती करे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। और इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें भिन्न भिन्न कृषि के बारे में ज्ञान हो, साथ ही अच्छी पैदावार वाली फसलों के बारे में पता हो, उपकरणों के बारे में पता हो, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल है जिसकी डिमांड जो है वो बाजार में ज़्यादा है और अलग अलग देशों में, प्रदेशों में, साथ ही जो मंडी के भाव है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे पास जो भंडारण रखे हैं हमने, उसे हमें कहां पर देना है, कहां पर बेचना है, वो क्या है, जिसके अनुसार हम हमारा जो किसान है वो यह पता कर पाए कि उसे आने वाली समय में कैसी कृषि करनी चाहिए। साथ ही हमारी मृदा परीक्षण है, मृदा, हमारे पानी की जो जांच है, जो हमारी फसलों पर और हमारी फसलों पर और पशुओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, जो पानी का पीएच है, हमारी मिट्टी की में जो गुण है वो कौन कौन से गुण है और गुण के हिसाब से हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें खेती बाड़ी कार्यक्रम, जो हमें कृषि के माध्यम से मिलती है, केवीके के माध्यम से मिलती है, तो वही सारी जानकारियों को हम चाहते हैं कि रेडियो टांटिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप जानें और आवश्यकता अनुसार अपनी खेती में आप सुधार करें।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
10: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे बायोगैस और बांस की खेती के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आप और हम जानते हैं कि हमारे घर में पशु है जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं, साथ ही हमारे हमारी जो पेड़ है, हमारी जो खेतों की मेड़े हैं उस पे हम आसानी से कोई ना कोई पेड़ लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम बांस की खेती करें वहाँ पर। बांस का जो पौधा है उसको अगर हम हमारे खेतों की मेड़ों पे अगर हम लगा दें तो ना केवल हमारी जो बाउंड्री है वो सशक्त बनेगी, बांस का जो पौधा है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर की जो लताएं हैं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं बांस के लठों का सहारा लेते हैं। तो किसान साथियों, हम देखें तो इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
11: ये बातचीत के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवास, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
12: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
11: जी जरूर, तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
13: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है, जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं, साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
11: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
14: जी हाँ, बांस की नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है, अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी दो साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार दो साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी जान करने वाला पौधा नहीं है।
11: जी।
14: अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम दो साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें, तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है, और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हम तो अभाव में पूरे। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं, तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
11: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है, और साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं, और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
13: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है, इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है, इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है, इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
11: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
12: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है, जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं, जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
11: जी,
12: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
11: जी,
12: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
11: जी
12: पानी के साथ दिया जा सकता है, इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
11: जी।
12: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
11: जी।
12: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो। और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
11: जी।
12: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी और फसल का उत्पादन कम होने की बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। यानी कि किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल वो कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग
11: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर,
12: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
11: जी,
12: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
11: जी।
12: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
11: जी।
12: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है।

0: यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
1: जी।
0: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है। आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है
1: जी बिल्कुल।
0: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है। और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायोवेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
1: जी।
0: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है। क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
1: जी।
0: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं। लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
1: जी।
0: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए। जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है। और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है। तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा
1: जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
0: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
1: जी।
0: वो जनता बायोगैस था। लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल, यह भी ईंट का सीमेंट का कंक्रीट का बनता है और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं और ये ज्यादा उपयोगी भी है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीनबंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीनबंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीनबंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए। क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: ಸಾಮುದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಂಡ್ಯಾ ಭೀಮ್ 90.8 FM. ಆಪ್ಡು ರೇಡಿಯೋ ಆಪ್ಡಿ ಬಾತೇ.
1: बायोगैस प्लांट है ये एमएनआरई मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है. तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है. तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है. तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी. जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं. लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट. इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है. आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है. बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए.
2: जी जी बिल्कुल. तो विपिन जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में. मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं.
1: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है. एक तो इसके बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है.
2: जी जी.
1: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है. अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है. इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है. साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए. और इसको सही जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं. आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है. और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है. तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं उसका लाभ उठाएं.
2: बिल्कुल. जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
1: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
2: जी
1: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए. और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा. दूसरी बात आती है जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि अच्छा। एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है.
2: अच्छा.
1: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी. दूसरी बात आती है जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
2: जी.
1: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं. और साथ साथ में आपको फीडिंग खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है. लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी.
2: अच्छा.
1: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा में मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
2: जी.
1: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है.
2: अच्छा.
1: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है. और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है, और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी, तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
2: जी
1: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
2: अच्छा।
1: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है, तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
2: अच्छा।
1: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
2: अच्छा।
1: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी होगा निकल जाएगा, तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी।
2: जी बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं।
2: जी जी।
1: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
2: अच्छा।
1: या हम कहीं से वो जाते डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है अगर हमारे पास। अच्छा। हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है, अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है।
2: जी।
1: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
2: अच्छा।
1: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
2: जी बिल्कुल।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है, अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको ये कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है।
2: जी जी।
1: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
3: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहाँ आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर आप वहाँ का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है, तो उसमें अपने आप वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं, और जो उसका अवशेष बच रहा है जो ठंडी हुई घास उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं, और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबी 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडियाबी 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, डीएपी, यूरिया और कुछ लोग पोटाश, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों की काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
1: जी, जी।
2: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
1: ठीक है,
2: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो एचटीबी के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं। उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं, या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
1: जी,
2: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे। और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप एचडीपी का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीक है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर की ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे, वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
1: जी।
3: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, और बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस होमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंडोकलेमस सिकिमियांसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां 2-3 मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूटक्स, 3 जातियों की खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: हाँ, बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है, बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक भी धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है, या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके ही आप बांस का पौधा खरीदे या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं

0: कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में?
1: जी हाँ, पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें। गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें और 100 ग्राम खली डालें और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम डीएपी, अगर डीएपी नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
0: जी।
1: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें। फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती है थोड़ी सी फरवरी में, फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं और 100 ग्राम के आसपास खली और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद हम नाइट्रोजन कम डालते हैं और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है और 100 ग्राम खली और 100 ग्राम डीएपी या 120 ग्राम एसएसपी और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वेराइटी आपको हमने देखा है 6-7 वेराइटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा, पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखुआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
0: जी।
1: तो आप तीन वेराइटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इस अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस को पानी बहुत चाहिए लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
0: जी,
1: वो लगाए या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
0: तो
1: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है
0: जी। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए।
1: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं
0: जी।
1: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित, अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ, जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम 2 चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था, तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दे। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम
0: जी।
1: कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति, इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो 2 ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के, यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
0: जी।
1: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है, तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
0: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी

0: बताते हैं। और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर डबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
1: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी दो समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है, और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं और आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो बायोगैस और बांस की खेती के ऊपर, कार्यक्रम के माध्यम से आपने बायोगैस से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का जो सवाल थे कि बायोगैस से जो बदबू आती है खाना बनाते समय, इन आदि सवालों का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और साथ ही बांस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, बांस को कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी उचित भूमि होती है और बांस को हमें किन किन कीटों से बचा के रखना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ ही हम आशा करते हैं कि जो भी आज के इस कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है, इसे आप अपने खेतों में जरूर इसका प्रयोग करेंगे और अपनी फसल को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर बायोगैस जो प्रसिद्ध है वो गैस के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी गैस का प्रयोग करके हम अपने घरों में किचन में अपना खाना पकाते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये जाना कि जो केचुए बनाने की खाद है वो भी वहीं से हमें मिल सकती है, जहां पर ओवरफ्लो होने के बाद जो अवशेष जो निकलता है उससे केचुए उसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, क्योंकि जो अपना गोबर है उसके अंदर काफ़ी हीट होती है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से केचुआ एकदम से उसे खा नहीं सकता। तो जब तक उसकी हीट निकल जाने के बाद केचुआ बहुत ही अच्छे से और थोड़ी गति से उसको खाता है। तो किसान साथियों, ये एक अच्छा गैस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम केचुआ खाद बना के जो जैविक खाद है वो भी हम अच्छे से बना सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में स्वागत है आपका। और आइए दोस्तों, मिलवाता हूं आज की कलाकारा से। इनका नाम है पूर्वी व्यास जी। बाकी की बातचीत हम पूर्वी जी से ही करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को पूर्वी जी के गाए हुए इस गीत से।

0: सुंदर गायकी, बहुत सुंदर गायकी पूर्वी जी। पूर्वी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हमें और हमारे श्रोताओं को जानकारी के तौर पर ये बताएं कि आपका जन्म कहां पर हुआ और उस जगह के बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए ना।
1: हेलो, नमस्कार, मैं पूर्वी व्यास हूँ। मेरा जन्म गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लिमडी नाम के गांव में हुआ था। वहाँ मैं बचपन में बहुत जाया करती थी, क्योंकि वहाँ मेरा ननिहाल पड़ता है और हम वहाँ बहुत खेले हैं और मेरी बचपन की बहुत सारी यादें वहाँ लिमडी से जुड़ी हुई है।
0: तो लीजिए दोस्तों, पूर्वी जी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: सुंदर गीत और सुंदर गायकी पूर्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पूर्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहते हैं और क्या खास है उस जगह के बारे में?
1: जी, मैं अभी गुजरात में अहमदाबाद शहर से हूँ। अहमदाबाद तो नाम ही काफी है, बहुत मतलब गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और उसको एक इंडिया का मेगा सिटी भी है, जो एक हेरिटेज सिटी भी कहा जा सकता है उसको, क्योंकि उसमें देखने लायक सीदी सैयद की मॉस्क है और फिर झूलता मीनारा भी है, बहुत सारी जगह देखने लायक है। मैं मेरे अहमदाबाद को बहुत चाहती हूँ, मतलब वहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बढ़िया पूर्वी जी, बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पूर्वी जी का ही गाया हुआ ये गीत।

0: सुंदर गीत, सुंदर गीत पूर्वी जी, बहुत बहुत आभार। तो पूर्वी जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या करते हैं? मेरा मतलब किसी प्रोफेशन में है या कुछ और?
1: हाँ जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं मेरे काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। घर का काम करना मुझे बहुत पसंद है और मेरा जो फ्री टाइम रहता है मैं उसमें सिंगिंग करती हूँ।
0: तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं पूर्वी जी की ही आवाज में ये गीत।

0: सुंदर गीत, सुंदर गायकी। पूर्वी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गाना गाने का शौक आपको कब से हुआ, आप कब से गा रही हैं?
1: जी, गाने का शौक तो मुझे बचपन से था। मैं स्कूल में थी तब गाती थी। मेरे जो संगीत के टीचर थे वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, और मेरी मम्मी ने घर में मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और वो मुझे मतलब गाने के लिए बहुत बोलती थी कि, और वो भी बहुत अच्छा गा लेती थी। अब तो खैर वो नहीं रही, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया था। लेकिन कुछ कई वजह के कारण वजह से मैं गाना नहीं गा पाती थी। फिर अब जाके मेरे पास टाइम है तो फिर मैंने गाना फिर से स्टार्ट किया पिछले 5-6 सालों से, और थोड़ा बहुत गा लेती हूँ मैं।
0: तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है पूर्वी जी की आवाज में ये एक और नगमा।

0: वाह क्या बात है, क्या बात है। पूर्वी जी, आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह के गीत, किस तरह के संगीत को आप पसंद करती हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएं।
1: मुझे फिल्मी संगीत तो पसंद ही है। जो फिल्मी गाने होते हैं हिंदी में, वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे वैसे भजन भी बहुत पसंद है। कोई कोई नॉन फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे हैं जो मैं पसंद करती हूँ। और गजल्स मैं कम गाती हूँ, मुझे पसंद है लेकिन मैंने बहुत ट्राई नहीं किया है।
0: तो लीजिए दोस्तों, अगला गीत पूर्वी जी की आवाज में।

0: पूर्वी जी, अब मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरा पसंदीदा या फेवरेट कह लीजिए लता मंगेशकर की मैं बहुत बहुत बड़ी चाहक रही हूँ। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत मिठास है उनकी आवाज में। और मतलब वो गाती है तो मैं मतलब मेसमराइज हो जाती हूँ।
0: तो लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है एक और गीत पूर्वी जी का।

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों?
1: मेरा पसंदीदा, सबसे पसंदीदा गीत है गुजराती गीत है, जो मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट था और मैं उनके लिए बहुत गाया करती थी, जो शायद आशा भोंसले ने गाया है, वो मारा राम तमे सीता जी ने तो लेना, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है पूर्वी जी की आवाज में ये गीत।

0: बेहद सुंदर गीत। पूर्वी जी, अब ये बताएं आप अपने खाली वक्त में क्या करती हैं? मेरा मतलब है आपकी हॉबीज क्या हैं?
1: म्यूजिक ही मेरी हॉबी है। मैं शुरू से ही म्यूजिक ही पसंद करती थी। मेरी हॉबी भी पहले से म्यूजिक ही रही है। म्यूजिक मतलब जब भी मैं गाती हूँ और सुनती भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनसे बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं उससे मोटिवेट भी होती हूँ। मुझे म्यूजिक हर तरह से पसंद है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं पूर्वी जी की ही आवाज में ये गीत।

0: पूर्वी जी, अब आपके पास एक मौका है आपके जैसे ही सिंगर्स को कुछ संदेश देने का, कुछ मैसेज दीजिए उनको।
1: जी, हमारे सुनने वालों के लिए तो मैं क्या कहूँ, मुझे ये गाने की वजह से ये रेडियो में गाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आप भी मेरी तरह ये रेडियो पर गा सकते हैं। आपका अपना पैशन पर काम कीजिए और गाते रहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा गाते रहिए बस, और तो मैं क्या कहूँ। जी, मुझे बहुत खुशी है आपके इस प्रोग्राम में आकर। थैंक यू सो मच।
0: लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है पूर्वी जी की आवाज में ये गीत।

0: बहुत बहुत आभार पूर्वी जी आपके सुंदर गीतों के लिए और आपकी प्रतिभा के लिए। हमारे सुनने वालों को कुछ संदेश दीजिए, उनसे बात कीजिए, कुछ मैसेज दीजिए उन्हें।
1: मैं मेरे जैसे सभी सुनने वालों को कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक को कभी ना छोड़े, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बहुत मजे में रहेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार पूर्वी जी। दोस्तों लीजिए एक और गीत पेश खिदमत है पूर्वी जी की सधी हुई आवाज में।

0: दोस्तों, ये थी पूर्वी व्यास जी अहमदाबाद से। इनका बहुत बहुत आभार जो ये हमारे प्रोग्राम में आई। हम इनके गीत सुनते ही रहेंगे।
1: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं आकांक्षा जी। बाकी आकांक्षा जी का आभार प्रकट करते हुए, थैंक यू कहते हुए, वेलकम करते हुए मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आकांक्षा जी, जरा हमारे आज के कलाकार फैमिली मेंबर से कुछ बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, बताइए उन्हें कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप।
1: हेलो एवरीवन, मैं खंडेलवाल। नमस्ते समीर जी, आप कैसे हैं?
0: आई एम गुड, थैंक यू।
1: सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी टिल नाउ, लाइक म्यूजिक इज कीपिंग अस गोइंग इन लाइफ, कीपिंग अस हैप्पी। सो बस म्यूजिक है जो चला रहा है, इट्स वेरी वेरी नाइस डूइंग दैट।
0: ब्यूटीफुल। तो आप कहाँ पर हो अभी, क्या करते हो मैम?
1: मैं जयपुर में रहती हूँ और वैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी वर्कशॉप्स लेती हूँ, बट ऑफ एंड ऑन करती हूँ, ऐसा नहीं कि रेगुलर करती हूँ अपनी क्लासेस। अभी इन दिनों में म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा रुझान है, क्योंकि म्यूजिक तो शुरू से सीखते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, बट अभी ये है कि अपना वीडियोज बना लिया, अपना म्यूजिक गाना गा लिया, ये इन चीजों में म्यूजिक में ज्यादा वो करते हैं।
0: बहुत खूब, अमेजिंग।
1: अदरवाइज मेरे दो बच्चे हैं तो बच्चों को संभालने में पूरा टाइम निकल जाता है वैसे।
0: That's very nice. I understand that. सभी महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको आगे के फ्यूचर के लिए हमें एक ऐसी जनरेशन देनी है जो बहुत अच्छी हो, जिससे हमारा समाज बहुत अच्छा बने। और फिर दोस्तों आपने सुना आकांक्षा जी तो संगीत में हैं, संगीत में वातावरण में रहती हैं, खुद संगीत में डूबी हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पूरे घर में एक संगीत में माहौल रहता ही होगा। चलिए तो ये आकांक्षा जी से मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हुए हम आकांक्षा जी से उनके म्यूजिक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, हम उनकी शख्सियत को समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना आकांक्षा
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आकांक्षा जी कि आपको आप ही के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: मुझको मेरे अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है दैट आई एम ट्रू टू व्हाट आई एम, आई डोंट हैव अ फिल्टर।
0: ऑलराइट,
1: सो आई एम वेरी अ ट्रू पर्सन, सो जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता है वो मेरे फिर मेरी शक्ति पे आ जाता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। देयर इज नो फिल्टर एट ऑल।
0: ओके ओके, सो कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी सारी किताबें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर कि व्हेन यू वांट टू से नो डोंट से यस, लेकिन कई बार दूसरों का दिल ना दुखे उस चक्कर में हम बर्दाश्त कर जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है?
1: बिल्कुल ऐसा होता है, लाइक व्हेन वी वर लिटिल यंग तो हम थोड़ा एडजस्ट करते थे, नाउ व्हेन वी आर ग्रोइंग तो अब थोड़ा सा जहां ना बोलना होता है वहां ना बोल देते हैं, बिकॉज वी शुड लर्न टू से नो व्हेन वी डोंट वांट टू डू समथिंग, बट समटाइम्स दैट अदर पर्सन who's asking us to do something is a very important, a very personal loved one. तो उसके लिए आपको थोड़ा adjust करना पड़ता है, झुकना पड़ता है और कर लेना पड़ता है।
0: Alright, तो ठीक है। तो मतलब दोस्तों मुद्दे की बात ये है, आकांक्षा ये बता रहे हैं that we need to be very very careful in telling our expressions or the feelings to other person, कि भाई उसको hurt भी महसूस ना हो जाए और हम अपना भी ख्याल रख लें, ऐसा ना हो कि हम उस चक्कर में hurt ही होते चले जाएं।
1: Exactly.
0: ठीक है, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत होती है, कई बार मुंह से कुछ फिसल भी जाता है, उसमें कभी कभी बुरा भी लग जाता है दूसरों को, लेकिन अभी क्या करें, सबको खुश भी तो नहीं रखा जा सकता, मतलब हम अपने आप को खुश रख लें या सबको खुश रख लें ये भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए
1: थोड़ा बैलेंस करना ही पड़ता है।
0: मोर ओवर आकांक्षा सीरियसली मुझे तो यही लगता है, यू नीड टू कीप यू नो मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। जब आप अपने से मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करोगे कि जो वो छलके तो दूसरों को मिले।
1: Exactly.
0: दूसरों को मोहब्बत करते करते पता चला आप तो बिल्कुल ही डिलैपिडेटेड और डेप्रिशिएटेड रह गए, दूसरे बड़े खुश हो गए, इससे क्या फायदा?
1: Like if your own cup is empty, you can't pour anything for someone else.
0: Absolutely beautiful.
1: So you have to keep yourself so happy and love yourself so much कि आप दूसरे को प्यार कर पाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब, ब्यूटिफुल मैसेज है ना दोस्तों। चलिए तो चलिए अब बहुत प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं आकांक्षा जी के ही गाए हुए, उसके बाद विल कम बैक टू टॉक टू हर मोर।

0: बहुत खूब।
1: अभी आकांक्षा आप ही के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके संगीत पर आएंगे।
2: जी जी,
1: आपको याद है लास्ट टाइम आखिरी बार आप खुद पर बहुत जोर से हंसे होंगे, कुछ याद है आपको? When did you laugh at yourself last time?
2: Like last time, वैसे तो बहुत हंसते हैं
1: अपने ऊपर।
2: क्या होता है अपने ऊपर, अपने ऊपर तो हम हरदम ही हंसते हैं। And actually जो अपने ऊपर हंसना सीख गया तो वो सब कुछ सीख गया लाइफ में, क्योंकि आप अपने ऊपर हंसना तो सीखो, बिकॉज नहीं तो आप हर चीज में ऑफेंड हो गए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाएगा आप ऑफेंड हो जाओगे। बट इफ यू कैन टेक योर सेल्फ वेरी लाइटली, बिकॉज एक्चुअली वी आर हियर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो यू शुड लाफ एंड एंजॉय। सो मेरे दो बच्चे हैं तो वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम हंसते ही रहते हैं कुछ ना कुछ बातों पर। तो अपने ऊपर हंसना तो सब हर इंसान को आना चाहिए।
1: That's so beautiful. Seriously, क्या कह दिया, बड़ा मजा आया इस बात को सुनकर और बहुत अच्छा लगा। आपको बताऊं सचमुच आकांक्षा, इसी वजह से मेरे को ये आजकल चैट जीपीटी से, जेमिनी वगैरह से जो कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं ना
2: जी,
1: वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। वैसे भी एनिमेटेड मूवीज मुझे बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि उसमें जो भी कैरेक्टर होता ना, विलन भी होगा तो वो बहुत क्यूट लगता है। और आपने जो बात कही ना कि अपने ऊपर हंसना, कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर हंसना सीख जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है दोस्तों।
2: फिर दूसरे लोग उसकी मजाक करना छोड़ देते हैं, अगर दे नो लगे तो खुद की मजाक उड़ा लेगा।
1: बिल्कुल, मतलब दूसरे तरीके से कहें तो उनका फन हम छीन लेते हैं अपने आप को फनी बना के।
2: जी बिल्कुल।
1: वाव, ब्यूटीफुल। दोस्तों कुछ मैसेज मिला तो मस्त रहिए, अपने ऊपर हंसना सीखिए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। चलिए
2: यस यस
1: आगे बढ़ते हैं और ये गीत पेश करता हूं आकांक्षा जी के, जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किए।

0: बहुत खूब, अमेजिंग। चलो अब आप अपने संगीत के बारे में बता दो।
1: जी,
0: मुझे ये याद पड़ता है आप हमारे प्रोग्राम रेडियो पर एक और प्रोग्राम में आलोक जी के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि आपकी फैमिली में सभी लोग गाते हैं शायद।
1: हाँ जी, मेरे पापा, मम्मी, भाई, मेरे बच्चे गाते हैं दोनों।
0: अरे क्या बात है, तो बड़ा मजा आता होगा ना, घर में एक माहौल हमेशा रहता होगा, कोई उधर से गुनगुनाता हुआ निकल रहा है, कोई इधर से गुनगुनाता हुआ निकल रहा है।
1: हाँ जी।
0: दोनों की स्वर लहरियां टकरा के फिर एक कव्वाली बन जाती होगी।
1: बहुत
0: मजा आता होगा,
1: बहुत मजे आते हैं। बचपन से ही हमने पापा मम्मी को गाना सुनते हुए देखा है। वो पहले जब गोल्डन एरा वाली जो सीरीज आया करती थी, कैसेट्स आती थी, फिर सीरीज, और ये सब देखा है कि वो सुनते रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, रात को रेडियो चल रहा है और अलग अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, अमीन सयानी जी के प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो हम छोटे थे तो हम सुनते रहते थे पापा मम्मी के साथ, तो म्यूजिक हमारे अंदर उस समय ही सीपन ऐसे लग रहा था अंदर जा रहा है म्यूजिक। और अब वो म्यूजिक लगता है कि हाँ, मतलब उसमें ही हमको एक्चुअली आराम मिलता है। वी फील वेरी कामनेस, अ पीस इनसाइड जब पुराने गाने सुनते हैं।
0: ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये बात कह के कि आपकी तो फैमिली ही म्यूजिकल है, पापा मम्मी भाई बेट बच्चे, मैं आगे बढ़ के ये पूछना चाह रहा था कि इतने सारे लोग हैं, सब लोगों को अलग अलग म्यूजिक भी हो सकता है पसंद हो, आप अपने बारे में बताओ, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। देखो बहुत जेनेरिक आंसर प्लीज मत देना कि हर तरीके का म्यूजिक मुझे पसंद है, नहीं। देखो खाना सबको पसंद होता है, सारा का सारा बफे में लगा होता है, एवरीथिंग इज गुड, फिर भी हम कोई एक चीज जाके चुनते हैं, तो वो क्या म्यूजिक है जो आप चुनते हो?
1: म्यूजिक, एक तो मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं,
0: वाओ, ओके।
1: और उसके अलावा सम सूदिंग गुड म्यूजिक, अच्छे जो गाने होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, बी इट अ सैड सॉन्ग ऑल्सो। लाइक आई हैव लर्न सो मेनी सैड सॉन्ग्स फ्रॉम माई टीचर कि मुझे अब लगता है मैं इतने सैड सॉन्ग क्यों गा रही हूँ, व्हाई एम आई सिंगिंग इतने दुखी गाने क्यों गा। बट जैसे अगर गाना है ये चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, सच अ सोलफुल, सच अ सॉन्ग, वो भी गाने में अच्छा लगता है। वो मैं गाती हूँ तो वो मैं खुश होके भी गा रही होती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो म्यूजिक अच्छा है। जो दिल को भा जाए म्यूजिक ना, वो म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता है।
0: तो बहुत क्लियरली दोस्तों आकांक्षा ने हमें बताया कि एक तो भजन, दैट इज सो ब्यूटीफुल, और क्योंकि वो एक अलग विधा है, भजन में जो भी म्यूजिक होता है या भजन की जो शब्दावली है
1: जी,
0: वही अपने आप में मंत्र होते हैं। मैं आज सुबह
1: जब हम ख्याल सीखते थे रात के, मोस्टली वो कृष्ण भगवान पे, मतलब भगवान पे ही होते थे, तो वो भी इतने अच्छे लगते थे गाने में, ख्याल भी, छोटे ख्याल जो होते थे रागों के, तो उनमें भी अच्छा लगता था। फिर हमारे मेरे गुरुजी पंडित आलोक भट्ट सर जी, तो वो मुझे इतने भजन सिखाते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, इट्स सो सोलफुल एंड इट इज हीलिंग योर हार्ट बेसिकली।
0: एब्सोल्युटली, आई गेट इट, आई गेट इट। मुझे इस बात से याद आ रहा है दोस्तों, मैं शेयर कर रहा हूँ यू ही कि जैसे उन्होंने आकांक्षा ने भी बताया कि वो जो एक सैड सॉन्ग है, कौन सा बताया आपने,
1: चैन से हमको कभी,
0: ठीक है ना। अब है तो वो सैड, लेकिन सुनने में भी और गाने में भी मजा आता है। सिमिलरली पंकज उदास की एक गजल है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है ना, लेकिन उसको, उसका जो स्टाइल है, उसकी जो ट्यून है, उसकी जो मेलोडी है, जो वो इतनी प्यारी लगती है कि उसे सुनने, बार बार सुनने का मन करता है, जबकि ओरिजिनली वो सैड है। एंड यूजुअली मैं सैड सॉन्ग्स या सैड म्यूजिक की तरफ नहीं जाता, बट उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। सो
1: आप चिट्ठी आई की बात कर रहे हैं?
0: कौन सी
1: आप चिट्ठी आई?
0: नहीं, प्रोबेबली चिट्ठी, वो आपने शायद सुना ही नहीं होगा वो।
1: ओके,
0: गम की घटा जो छाए तो फिर झूम के बरसे, ये वाला है।
1: ओके,
0: नहीं सुनाना?
1: नहीं,
0: गूगल करना, अभी गूगल करना। इट्स अ लवली लवली गजल। तो ये दरअसल मेरे एक सीनियर ने किसी, उनको फेयरवेल दिया जा रहा था जब मैं IIT BHU में था, तो तब से मुझे अटक गई है गजल, बड़ी प्यारी लगी। एनीवेज चलो अब भी तो यार कैसे मत करो, आप ही का प्रोग्राम है, इट्स नॉट माइन। आगे बढ़ते हुए आपके गीत सुनते हैं पहले, एंड देन वी विल कम बैक टू नो यू मोर। चलिए दोस्तों पेश करता हूं ये गीत

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू सो मच।
0: आलोक जी के साथ जो आपका प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने आपकी गायकी सुनी थी, तो मैं आपका मुरीद तभी से हो गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी तो दिस प्रोग्राम इज एन एक्सक्लूसिव म्यूजिकल प्रोग्राम ऑफ योर्स, सो मजा ही कुछ और है। बहुत खूब। चलो आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आकांक्षा। अगला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है ना, वो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, मतलब बड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा केयरफुल। हाँ
1: जी।
0: अगर मैं आपका परिचय किसी को दूं
1: जी,
0: तो आप क्या चाहेंगे कि उनको मैं आपके बारे में क्या बताऊं?
1: क्या बताऊं?
0: शुड आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन?
1: No, I have understood. I'm just trying to make myself understand कि आप मेरा परिचय किसी को तो introduce मुझे करें, तो how should you introduce me to that person?
0: आपको yes. आप क्या चाहेंगी?
1: आप ये कहेंगे कि she is a passionate a music lover.
0: Wow.
1: She just loves the music and she goes with the flow of life. So I don't plan a lot of things, but things happen in my life.
0: Okay.
1: And a very diligent kind of a person, like a disciplined kind of a person who likes discipline in life, doing things proper way. So that way, and a fun loving person. Like if I'm sitting somewhere, if I'm sitting, then I will make people laugh.
0: Right. Asana,
1: and just making everybody enjoy and making the things light.
0: Cool. क्या मजेदार बात है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अब ये तो थी आकांक्षा जी, सॉरी ये तो हैं आकांक्षा जी, जिन्होंने बताया कि वो कौन है, किस तरीके की पर्सन है। शी डजंट लाइक सिटिंग सल्किंग, सब लोग बैठे हैं तो शी वुड लाइक एंड शी वुड ट्राई हर लेवल बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। तो फन लविंग पर्सन, बहुत खूब। आप लोग जरा अपने ऊपर विचार कीजिए कि अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या चाहोगे, आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तब तक आइए ना, सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक आकांक्षा जी के इन गीतों का लुत्फ उठाएं एंड देन वी विल कम बैक।

0: Wow, amazingly beautiful singing.
1: Thank you for the appreciation. Thank you.
0: चलो आगे बढ़ते हुए आकांक्षा जी ये बताओ.
1: हाँ जी.
0: बचपन वाले आप और आज वाले आप में कितना फर्क है?
1: बचपन वाले आप बहुत फर्क होता है. लाइक इफ आई सी माई सेल्फ लाइक 20 ईयर्स बैक ऑल्सो आई वॉज लाइक एन इम्पेशेंट पर्सन. अब पेशेंस बहुत आ गया है, ठहराव बहुत आ गया है. पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. पहले ऐसा लगता था कि किसी से भी लड़ाई हो गई तो बात नहीं करेंगे. अब ये होता है कि ओ लाइफ इज टू शॉर्ट, देयर इज नो नीड टू फाइट. वी शुड नॉट गांठ नहीं बांधनी किसी चीज की. सो एक अच्छे से रहें तो अच्छा रहेगा. वी नेवर नो इन लाइफ व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट मोमेंट. एंड बहुत फर्क होता है. लाइक as you grow, you change into a better person. You become wiser. You gain a lot of wisdom. तो बहुत फर्क होता है. आप बचपन में आप थोड़ा सा गुस्सा भी करते हो, आप impatient भी होते हो, आप समझते नहीं हो चीजें जल्दी से, आप थोड़ा सा stubborn होते हो ना.
0: Right.
1: आप थोड़ा बदल जाता है फिर धीरे धीरे धीरे. जब आपके बच्चे आते हैं तो बच्चे स्टबर्ननेस दिखाते हैं, तब आप पेशेंट हो जाते हैं उनके साथ.
0: तो आकांक्षा कभी ऐसा नहीं लगता कि यार, और अक्सर लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि यार हम वापस से बच्चा बनना चाहते हैं, तो क्या हम वापस से इंपेशेंट बनना चाहते हैं?
1: इसका तो ये है कि वी शुड बी चाइल्ड लाइक, वी शुड नॉट बी चाइल्डिश. वी शुड ग्रो वेरी ग्रेसफुली इन लाइफ. एंड जो भी एज है उसको ग्रेसफुली लेके आगे चलना चाहिए. वी कांट गो बैक टू व्हाट वी वर.
0: वाओ, दैट्स क्यूट.
1: बच्चे नहीं बन सकते.
0: दैट्स क्यूट.
1: हम बच्चों के जैसे अपना मन रख सकते हैं कि हम वैसे ही मासूम, वैसे ही कोमल और वैसे ही बिना किसी फिल्टर के रह सकते हैं. बच्चों के जैसे अच्छे,
0: शरारती, शैतान, है ना?
1: शरारत तो जिंदगी भर रहनी चाहिए.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल.
0: मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ आकांक्षा, आई फुल्ली एग्री विद यू. बड़ा मजा आया ये बात सुन के. एक्चुअली तुमने वैलिडेट कर दिया जो मैं सोचता था. मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ और सोचता भी रहता हूँ कि मेरे दिल का एक कोना बच्चा है और मैं उसे हमेशा संभाल के रखना चाहता हूँ. उसे बच्चा ही सोने नहीं देता उसे. वो बच्चा जब तक खेलेगा नहीं ना, मुझे मजा नहीं आता. सो कीप प्लेइंग.
1: चर्पी बबली नहीं रहेंगे हमारे. सो आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड वांट टू सिट विद अस एंड टॉक टू अस. वी विल रिफ्लेक्ट द सेम बिहेवियर इन आवर किड्स.
0: क्या बात है. दैट इज सो क्यूट. बड़ी ही खूबसूरत तरीके से कहा दोस्तों. इस बात को याद रख लीजिए, वी शुड बी चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश. ब्यूटिफुल.
1: यस,
0: क्या कहा है.
1: बहुत खूब.
0: चलो दोस्तों, इसी बात पर मुस्कुराते हुए, शरारत भरी मुस्कुराहट देखते हुए, आंखों में टिंकलिंग देखकर लेकर इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं. एंड देन विल कम बैक.

0: बहुत खूब आकांक्षा, अमेजिंगली ब्यूटिफुल आपसे बात करके, बिल्कुल जो जो बिल्कुल यू नो चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश लेकिन विद फुल ऑफ एनर्जी जो बातें हो रही ना, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत मजा आ रहा है।
1: चलो, मुझे भी बहुत मजा आ
0: रहा है, थैंक यू। चलो चलते चलते आपसे एक चीज पूछूं, क्रिएटिव, और ये yes. चीज मेरे को लगता है आपको बच्चों को भी पूछनी चाहिए, या शायद आप पूछती भी हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको? अगर गॉड कहे कि यार चलो एक सुपर पावर ले लो आकांक्षा, तो व्हाट काइंड ऑफ सुपर पावर वुड यू वांट?
1: सुपर पावर, आई वुड वांट टू नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग।
0: अरे आकांक्षा तुम, वो तो बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी है। मैं बता देता हूँ, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, nobody's thinking about you. So that is very simple.
1: Like mere bete se abhi thode din pehle humne kaha ki what do you want, something unrealistic. So bole what I want to speak about, like they, he had to speak like for 1 minute. So what do you want to speak about? Something fantasy. He said if animals could talk.
0: Wow. Okay.
1: So this is what he said. He's going to be six. He said if animals could talk.
0: That's nice.
1: मुझे तो, मेरा तो फर्स्ट ये ख्याल है कि मैं देख पाऊँ कि अगला सोच क्या रहा है, उनके विचार तो जान पाऊँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे याद आ रहा है वो कविता, तो मुझे याद नहीं, लेकिन अशोक चक्रधर साहब की एक कविता थी, उन्होंने जो लिखा था कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, इट वॉज फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, वो इंस्ट्रूमेंट को लेके जाते थे तो सामने वाला जो सोच रहा है वो उनको सुनाई देता था। How beautiful. Okay. तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको ये पावर मिल जाए तो क्या होगा, और अगर आकांक्षा जी को ये पावर मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप आकांक्षा जी से ना मिले।